103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के सावन मास की 10वीं तिथि तदनुसार 1 अगस्त 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Tanvi Khurana.
4: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आए सुनते हैं खेती की बातें।
5: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें हरे चारे को संरक्षित करने की, पशुओं से अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक चारे की आवश्यकता होती है। इन चारों को पशुपालक या तो स्वयं उगाते हैं या फिर कहीं और से खरीद कर लाते हैं। ग्रामीण भाइयों, चारे को अधिकांशतः हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है तथा इसकी अतिरिक्त मात्रा को सुखाकर भविष्य में प्रयोग करने के लिए भंडारण कर लिया जाता है, ताकि चारे की कमी के समय उसका प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जा सके। इस तरह से भंडारण करने से उसमें पोषक तत्व बहुत कम रह जाते हैं। इसी चारे का भंडारण यदि वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उसकी पौष्टिकता में कोई कमी नहीं आती है। चारों को भंडारण करने की कई विधियां हैं। किसान भाइयों, चारे को भंडारित हम हे बनाकर भी कर सकते हैं। हे बनाने के लिए हरे चारे या घास को इतना सुखाया जाता है जिससे कि उसमें नमी की मात्रा 15-20% तक ही रह जाए। इसे चारे की पौष्टिकता में कमी नहीं आती है। हे बनाने के लिए लोबिया, बरसीम, रिजगा तथा ज्वार, नेपियर, बाजरा वगैरह का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन एवं विटामिन ए, डी एवं ई भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए ये फसलें बहुत उपयुक्त होती हैं। हे बनाने के लिए चारा सुखाने के लिए कई विधियां अपनाई जा सकती हैं। किसान भाइयों, जब चारे की फसल फूल आने की स्थिति में होती है उसे काट कर परतों में पूरे खेत में फैला देते हैं और बीच बीच में उसे पलटते रहते हैं जब तक इसमें पानी की मात्रा लगभग 15% तक ना रह जाए। इसके बाद इसे इकट्ठा कर लेते हैं तथा ऐसे स्थान पर जहां वर्षा का पानी ना आ सके इसका भंडारण कर लिया जाता है। चारे का गट्ठर बनाकर भी हम संरक्षित रख सकते हैं। इसमें चारे को काट कर 24 घंटों तक खेत में पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद इसे छोटी छोटी ढेरियों अथवा गट्ठरों में बांधकर पूरे खेत में फैला देते हैं। इन गट्ठरों को बीच बीच में पलटते रहते हैं जिससे नमी की मात्रा घटकर लगभग 18%

तक हो जाए। चारे को तिपाई विधि द्वारा सुखाकर भी हम संरक्षित रख सकते हैं। जहाँ भूमि अधिक गीली रहती हो अथवा जहाँ वर्षा अधिक होती है, ऐसे स्थानों पर खेतों में तिपाइयां बनाकर चारे की फसलों को फैला देते हैं। इस प्रकार ये भूमि के बिना संपर्क में आए हवा व धूप से सूख जाते हैं। कई स्थानों पर घरों की छत पर भी घासों को सुखाकर हे बनाया जाता है। किसान भाइयों, साइलेज बनाकर भी हम चारा को सुरक्षित रख सकते हैं। हरा चारा जिसमें नमी की पर्याप्त मात्रा होती है, उसको हवा की अनुपस्थिति में जब किसी गड्ढे में दबाया जाता है तो किण्वन की क्रिया से वह चारा कुछ समय बाद एक अचार की तरह बन जाता है, जिसे साइलेज कहते हैं। हरे चारे की कमी होने पर साइलेज का प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए भी करते हैं। किसान भाइयों, उन्नत चारा उत्पादन और संरक्षण को अपनाकर हरे चारे की कमी की समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, जिससे गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में हरे चारे के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि होगी। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, दुधारू जानवरों को यदि हरा चारा नहीं देंगे तो इन पशुओं में प्रोटीन और विटामिन की मात्रा में भारी कमी आ जाती है और इससे पशुपालक को नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बरसात के दिनों में चारा संरक्षण बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें हरे चारे को संरक्षित करने की विधियों के बारे में। हमें कार्यक्रम खेती की बातें से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हरे चारे को संरक्षित करने की वेदिका प्रतिभा वर्मा से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: दो सौ पच्चीस टू टू

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नर नारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हों, तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। संत कबीर ने इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व पर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं, भविष्य का क्या भरोसा, ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए कल के लिए किसी काम को छोड़ना उचित नहीं है। जो करना है अभी कर लो, क्योंकि पल भर में यदि प्रलय आ गया तो फिर क्या करोगे। इसका सार यही है कि समय के हर एक पल का सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो कल करना है आज करो, आज करना है तो अभी कर लो। समय ठहरता नहीं है और जीवन का भरोसा नहीं है। समय की महत्ता जीवन में काफ़ी है, समय अमूल्य है। यदि एक बार हाथ से फिसल गया तो फिर वह समय दोबारा पकड़ में नहीं आता, जो बीत जाता है। इसलिए सफल जीवन के लिए समय का प्रबंधन आवश्यक है। जीवन में काफ़ी भाग दौड़ होती है, कई काम होते हैं, और यदि समय अनुसार काम ना किया जाए तो जीवन दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और इंसान परेशान रहता है। जो लोग व्यवस्थित समय अनुसार हर काम को समय रहते पूरा कर लेते हैं, उन्हें दिक्कतें कम आती हैं, और ऐसे लोग हर कार्य समय रहते पूरा कर पाते हैं। यदि हम विद्यार्थियों की बातें करें तो जो बच्चे समय का सही प्रबंधन करके पढ़ाई करते हैं, वो शांतिपूर्वक अपना इम्तिहान दे पाते हैं और परेशान नहीं होते हैं। इसके विपरीत कई बच्चे समय का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जब समय बीत जाता है तब अफरा तफरी में पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण मानसिक शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, और फिर वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है। इसी संदर्भ में संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की वो चिंता नहीं करते, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करते, ऐसे लोग तनाव रहित रहकर अपना काम करते जाते हैं। कुछ लोग जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं, पछताते रहते हैं। ऐसे लोग भी तनाव से भरे रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ मनुष्य त्वरित काम करने के लिए बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हैं, तो यह भी सही नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार सभी कार्य किए जाने चाहिए, और ऐसा करने से परेशानी नहीं होती है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो जग जाहिर है। कछुआ धीरे धीरे गति से चलता रहा और गंतव्य तक पहले पहुंच गया। खरगोश, जो तेज़ दौड़ने वाला है, तेज़ दौड़ा, लेकिन आराम के चक्कर में वह पिछड़ गया और कछुआ से हार गया। इसी तरह तेज़ भागना भी सही नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने से सफलता भी मिलेगी और तन मन में किसी पर प्रकार का बोझ भी नहीं होगा। संत कबीर के दोहे के गुण रहस्य को समझते हुए जीवन में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना ही समझदारी है, और यही जीवन सार भी।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन कल करे सो आज कर, निर्मला तिवारी से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ में आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे डायबिटिक कारण लक्षण एवं बचाव। भेंटवार्ता का है डॉक्टर रविंद्र कुमार और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।

0: मित्रों, आजकल की जो जीवन शैली है काफी अव्यवस्थित हो गई है। हमारा खाने पीने का तरीका में काफी बदलाव आ गया है, रहन सहन में काफी परिवर्तन आ गया है और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां आप तक पहुंच जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी बीमारी से परेशान हैं, बड़ों के क्या कहें। और एक ऐसी ही बीमारी है मधुमेह या डायबिटिक, जिससे हमारे लगभग लगभग बहुत सारे साथी, हम तो यूं कहें कि 10 में से 4 या 5 व्यक्ति मधुमेह के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये मधुमेह होने का जो प्रमुख कारण क्या है, क्या हमारी बदलती जीवन शैली है, हमारा खान पान है और इसके लक्षण क्या हैं, ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और अपने जीवन शैली में हम बदलाव करें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार अम्बष्ट जी। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में डायबिटिक होने का क्या कारण मानते हैं?
1: वर्तमान समय में डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण जो है से आजकल की जीवन शैली। आजकल का जो जीवन शैली है वो बड़ा ही पहले की अपेक्षा बिल्कुल ही बदल गया है। पहले के लोग जो है से समय पर खाना पीना करते थे, समय पर सोते थे, उतना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस नहीं था। आजकल हर व्यक्ति जो है से स्ट्रेस में जी रहे हैं और रात में को दिन की तरह काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने के होड़ में जो है सो अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब किए जा रहे हैं। खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं है, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ नहीं खा रहे हैं, कभी शाम खा रहे हैं, कभी सुबह खा रहे हैं, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा रहे हैं, उसके साथ नशा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही सब कारण डायबिटीज़ वगैरह बहुत फैल रहा है। और डायबिटीज़ हर घर में दिखेगा तो एक ना दो जन इससे पीड़ित हैं। डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस उसको कहते हैं जिसको कि उसको एक्चुअल में हिंदी में मूत्रमेह बोला जाता है, जिसमें कि जो व्यक्ति पेशाब करते हैं उसमें शुगर का कोई शिकायत नहीं होता, लेकिन उसको पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, बहुमूत्र बोलते हैं।

0: चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है, शरीर में कमजोरी आते जाती है। और इसका होने का मुख्य कारण क्या है, एंटीडायरेटिक हार्मोन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ सिक्रीशन में कमी आता है, चाहे वो उसके लिए बहुत सा फैक्टर है, जैसे मान लीजिए ब्रेन में ट्यूमर है, सार्कोमा है, और माथे में सिर में चोट लगा हो, मतलब सर्जरी हुआ हो सिर में, ये सब कई कारण है जिसके वजह से वहाँ जो ट्रैक्ट बना हुआ उसको हार्मोन को ले जाने के लिए उसमें डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वो हार्मोन वहाँ जा नहीं पाता है या कम जा पाता है, जिस वजह से ब्लड स्ट्रीम में जा कर के मिलने से उस चूँकि कब पेशाब जाना है नहीं जाना है उस चीज़ पर कंट्रोल करता है, जो कि उस चीज़ पर जब वो हार्मोन नहीं पहुंचने से वो पेशाब की मात्रा जो बढ़ जाती है और इस तरह से डायबिटीज़ इंसिपिडस जिनको होता है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस का रोगी कहलाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज के प्रमुख लक्षण हैं वो क्या है, ताकि हम सावधान हो जाएं और अपना इलाज शुरू कर दें।
0: डायबिटीज इंसिपिडस का जो लक्षण है, अब जिसमें प्यास अधिक लगता है, मुंह सूखता है, डिहाइड्रेशन होता है, ये सारे उसके लक्षण हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगा, जांच करावेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका बढ़ावा मिलेगा। ये इंसिपिडस जिसको कि मूत्र में है उसको कहते हैं, और जो डायबिटीज जिसको कि लोग जनरली मानते हैं जो जिसको उसको कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को मधुमेह बोलते हैं, जिसमें शर्करा के जाने की शिकायत रहती है, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं मधुमेह बोलते हैं, और इसका मुख्य कारण है हमारा मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ी। मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ी क्या है, इस सेंस में कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो बसा फैट जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सही से उसका चयापचन नहीं हो पाता है, उसको डिसइंटीग्रेशन होने में दिक्कत होता है, उसमें जो केमिकल कुछ चेंजेज आ जाता है जिस वजह से वो अंतिम जो उसका रूप है ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिस वजह से ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ता है, और इसमें बहुत हद तक जो है सो पैंक्रियाज से रिलेटेड जो लैंगरहंस ऑफ आइलेट है जहाँ उस सेल है वहाँ से इंसुलिन का निर्माण होता है, और इंसुलिन हो सकता है कि या तो निर्माण होता नहीं है या कम होता है या निकलता नहीं, जो भी रीज़न है इंसुलिन उसके लिए उत्तरदायी होता है। इंसुलिन अगर जो है सो सही मात्रा में आता है तब तो उस ब्लड शुगर सही नॉर्मल रहता है, अगर इंसुलिन नहीं रहा तो ब्लड शुगर आपको जो है सो बढ़ावा मिलेगा। ब्लड शुगर अगर जांच कराइएगा तो खाना खाने के बाद 149 से ऊपर दिखेगा, 180 तक तो मान लीजिए चलता है, 180 से ऊपर दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि हम शुगर से ग्रसित है।
1: डायबिटिक होने के उपरांत किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, अपने जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, खान पान में हम किन किन चीज़ों का सेवन करें और किन किन चीज़ों से हम दूरियां बनाएं।
0: वैसे तो यह फैटल नहीं है, डायबिटीज को अगर सलीके से अगर उसको मेंटेन किया जाए, उसको खान पियान में कुछ परिवर्तन किया जाए, जिस तरह से बॉडी वेट के अनुसार अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 65 किलो है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम 150 ग्राम होनी चाहिए और प्रोटीन की मात्रा 70 ग्राम और फैट की मात्रा 60 ग्राम के आसपास होनी, जो मिला जुला के 1400 कैलोरी लगभग उनको मिलना चाहिए, इससे उनका वो मेंटेन रहेगा खान पियान के लिए। दूसरे बात, नशा वगैरह कुछ करते हैं उसको छोड़ दें, सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह किया करें, मॉर्निंग वॉकिंग किया करें, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेकर कोई काम ना करें, घर में किसी तरह कोई तनाव ना लें, तो इस सब बहुत हद तक हम बचे रहेंगे। और इसका जो जरूरी मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है वो रेगुलर लेते रहें, हाँ डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें, अपने से कोई दवा ना करें। डायबिटीज़ का कोई विशेष कोई ऐसा लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लक्षण ऐसा है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना, शरीर में वजन घटता चला जाना, मस्कुलर वेस्टिंग हो जाना, ये सब कई कारण हैं। और भी इसमें लक्षण कुछ दिखता है, जैसे आपका स्त्रियों में प्रूराइटिस भाल्वा उसको बोलते हैं, काफ़ी इचिंग होता है पेशाब के रास्ते में, और स्किन डिजीज वगैरह हुआ और वाल्वाइटिस हुआ, जेंट्स में बलानाइटिस।

0: जिसको बोलते हैं लिंग मुंड में सूजन हो जाना, वहाँ स्किन का इरप्शन होना, ये सब कई कारण हैं जो डायबिटीज़ के लक्षण हमें दिखाते हैं।
1: जब डायबिटीज से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो वो मीठा खाना छोड़ देते हैं, मीठा से बहुत दूरियाँ बना लेते हैं, तो कितना मीठा खाएं, चाय में शक्कर की मात्रा वो नहीं लेते हैं, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि डायबिटिक हो भी जाता है तो अपने आप को मेंटेन करते हैं और सभी चीज़ें खाते रहते हैं। तो कौन कौन से फल का सेवन किया जाए, कौन कौन से सब्जियों का सेवन किया जाए, और भात दाल के अलावा और अपने भोजन में शामिल किया जाए ताकि हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बिल्कुल।
0: सब्जियों में हरा साग सब्जी, पालक साग हुआ, मेथी हुआ, ये सब जो है इस्तेमाल करें, और फल में खट्टे फल का इस्तेमाल करें, जैसे संतरा हुआ, ये सब जो है सब मीठे फल का इस्तेमाल ना करें
1: जी।
0: और खाने के लिए चना फुला के या भूंज के भुंजा के रूप में लें, ये बहुत ही अच्छा है। सत्तू के रूप में लें, सत्तू प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। चावल की मात्रा को कम करें, आटा जो लेते हैं गेहूं की उसमें मिक्स आटा मिले, जैसे ज्वार माजरा ये सब की चना के आटा मिला करके रोटियाँ बनाएं, और चोकर सहित रोटियां बनाया खाएं, वैसी नहीं कि चोकर निकाल के मैदे वाला आटा खाएं। वो
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रविंद्र कुमार से डायबिटीज के कारण एवं लक्षण बचाओ। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकदिवसीय आंध्रप्रदेश कर्नाटक यात्रायां भविष्यति। आंध्रप्रदेशे प्रधानमंत्री भोगापुरम इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजु अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं 600-5,000 crore rupees व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रीय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं 60 lakh यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमंत्री 80-8,100 crore rupees व्ययुताः राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति, तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति। आंध्रप्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमंत्री कर्नाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवक केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेष भावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिक संचार पटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधान्याः जंतर मंतर स्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखम् अकरोत् यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगत मात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देश विदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपितु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
4: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो यही मेरा सपना है।
3: केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य

0: उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5,000 मेगावाट् मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जासञ्चयनप्रणालीनां न्यूनतम संचयनक्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानास्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्णपदकानि, 12 रजतपदकानि, 6 कांस्यपदकानि च सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब कुल 23 पदक हो गए हैं जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward the misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in the national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct was understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: Prime Minister Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. The Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaramaraju International Airport at Bhogapuram. He will lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Vishakhapatnam. After concluding his visit to Andhra Pradesh, the Prime Minister will reach Mysuru in Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Viveka Smarka. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said India urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He stressed that India condemns any such attack by any party. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan yesterday. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation Talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A total of 12 new Project Tide Assistance PTA projects amounting to 332 crore rupees were approved. They cover sectors such as infrastructure, healthcare, agriculture, urban amenities, and disaster management. The Union Cabinet has approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Addressing media in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision reaffirms the government's commitment to harnessing the power of sports for youth development and nation building. At the Commonwealth Games in Glasgow, India delivered another outstanding performance yesterday, clinching two historic gold medals in judo, securing a memorable double podium finish in the men's javelin throw, winning a first ever bronze medal in the decathlon and booking places for 10 boxers in their respective finals. And that is the end of this news bulletin.
5: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और मीडियम वेव 366
6: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:15 पर आप सुनेंगे राग रंग शास्त्रीय संगीत, 7:45 पर आप सुनेंगे कानून की बातें, 8:15 पर हम चलेंगे दिल्ली जहां से आप सुनेंगे, 8:00 का समय होगा दिल्ली से समाचार प्रभात का, 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से, 8:45 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन ज्वार बुलामू का समय होगा 9:00, 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 10:00 का समय होगा दिल्ली से हिंदी में समाचार का, अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे 10:05 पर, 10:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती जिसमें आप सुनेंगे गीतों भरी कहानियाँ, 11:00 का समय होगा चित्रपट संगीत का, 12:00 यादों की महफिल, दोपहर के 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से, अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर, 1:10 पर हम चलेंगे रांची जहाँ से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, विविध भारती का समय होगा 1:20 पर, 2:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में, 2:30 पर हम चलेंगे मुंबई जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में सदाबहार नगमे, प्रादेशिक समाचार का समय होगा रांची से 2:55 पर, 3:00 का समय होगा विविध भारती का जिसमें आप सुनेंगे मन चाहे गीत, 3:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में नाट्य तरंग, 4:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का रांची से, 4:02 पर हम चलेंगे मुंबई जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में बॉम्बे टाकीजा, 5:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का, 5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में छाया।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:00, 6:02 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम, 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण सभा, 7:15 पर आप 7:07 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से, 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल रांची से, 7:15 पर आप सुनेंगे गीत गजलों का कार्यक्रम मेहदी हसन की आवाज़ में। विज्ञान जगत का समय होगा 7:45 पर, 8:00 का समय होगा दिल्ली से इस सप्ताह संसद में, 8:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत, 8:30 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के तहत विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत। हिंदी में समाचार का समय होगा 8:45 पर दिल्ली से, 9:00 का समय होगा दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार का। उर्दू में समाचार आप सुनेंगे 9:15 पर, 9:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती।

थी आज के फनकार। रजनीगंधा का समय होगा 10 बजे। 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार और रात 11:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं राग रंग शास्त्रीय संगीत।

0: और ये लोगों के इमोशंस के साथ कैसे खेलते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये या तो आपको डराएंगे कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, या आपके ऊपर चार्ज लगने वाला है, आपके अकाउंट से पैसा निकलने वाला है, या आपको लालच देंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको करोड़ों में रुपए मिलने वाला है, या आपको जल्दबाजी करेंगे कि आप जल्द से जल्द ये करिए, इस लिंक पे क्लिक करिए, या ये OTP हमको बताइए। इसको हम जब टेक्निकली समझते हैं, इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें ये साइबर ठग लोगों के विश्वास और इमोशंस के साथ खेल के या तो डराते हैं, या लालच देते हैं, या जल्दबाजी करते हैं, और लोग इसी का शिकार हो जाते हैं, और वो अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन या वो इंफॉर्मेशन जो उनको नहीं शेयर करना चाहिए, जैसे मोबाइल का OTP, ATM का पिन, UPI का पिन, जो शेयर करने से उनको हानि हो सकती है, इससे उनको हानि हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उसके बाद ही कोई कदम लेना चाहिए।
1: सर, ज़्यादातर इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग को क्या करना

0: एटीएम कार्ड का पिन क्या है, तो आपको रुकना चाहिए। अगर आपको ये बोल रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, तो आपको तुरंत कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको पहले सोचना चाहिए क्या ऐसा कुछ हुआ है जो वो व्यक्ति बता रहा है, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि आप रुक जाइए, आप हमको आधे घंटे में फ़ोन करिए, हम आपको सोच के बताते हैं। और हमेशा जब कॉल किसी उस नंबर से आ रहा हो, जैसे आजकल आपको बैंक से अगर कोई कॉल आएगा तो 1600 नंबर से ही आएगा, जैसे पहले 1800 से आता था, अब 1600 से ही आएगा। अगर किसी प्राइवेट नंबर से, किसी पर्सनल मोबाइल नंबर से, किसी स्पैम नंबर से आपको कॉल आ रहा है, तो कोशिश करें कि वैसा नंबर आप ना उठाएं। अगर आपने उठा भी लिया और कोई इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहे हैं, तो हड़बड़ा के ना दें। अपने परिवारजनों से बात करें, डायरेक्टली अपने बैंक से बात करें, बैंक के कस्टमर केयर से बात करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की आर्थिक हानि ना हो।
1: सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोबाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल इस समय युवा और बच्चे कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों, विद्यार्थियों और खासकर युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में?
0: मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि वो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, इंटरनेट पे किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें। कोई भी अनजान नंबर से अगर आपको बार बार कोई फ़ोन आ रहा हो, तो वो फ़ोन ना उठाएं। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, आप अपना लोकेशन शेयर ना करें। आप घर का पता, स्कूल का नाम, अपनी फ़ोटो किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे ना शेयर करें। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे इस तरीके की जानकारी मांगे, तो तुरंत अपने परिवार, माता पिता, गार्जियन या टीचर्स को इन्फॉर्म करें। एक और चीज़, आप कभी भी जो अपनी ऐसी फ़ोटो जो आप सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं, तो आप हमेशा स्वयं से एक सवाल पूछें, क्या ये फ़ोटो मुझे सोशल मीडिया या इंटरनेट पर डालने से कोई नुकसान तो नहीं होगा?
1: ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सर, चूँकि आज की जो कनेक्टेड लाइफ है, उसमें हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तस्वीरें लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, और उसको तुरंत किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की टेंडेंसी रहती है। तो इसमें बच्चों, विद्यार्थियों और खासकर युवाओं को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, जब युवाओं की बात होती है, तो एक पीढ़ी ऐसी भी है जिसने तकनीक को पूरे तरीके से बदलते देखा है, जिसने तार को बेतार होते देखा है, टेलीफोन को मोबाइल में बदलते देखा है। तो ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, जिन्होंने तकनीक को पूरे तरीके से शायद अभी तक आत्मसात नहीं किया है, वो उतने फ्लुएंट नहीं है टेक्नोलॉजी के यूज़ में, और अक्सर साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को क्या करना चाहिए?
0: इसमें सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों को तो ये समझना चाहिए कि आज जिस जमाने में हम रहते हैं, वो डिजिटल एज है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो, आपके प्रियजन या जानकार की आवाज से भी आपको फोन किया जा सकता है। तो सबसे पहला, अगर आपसे कभी भी कोई फोन पे पैसे मांगे, सोशल मीडिया पे पैसे मांगे, उसको इमीडिएटली कभी भी पैसे ना भेजें। आप उनसे डायरेक्टली आमने सामने मिलके बात करके और फिर ही पैसे भेजें। कोई भी व्यक्ति फोन पे अगर आपको कह रहा है कि आपके किसी पार्सल में कोई ऐसी चीज मिली है जो इल्लीगल है, तो आप घबराएं ना, आप उसको समझें, उसको ठीक तरीके से जानें, आसपास के लोगों से उसके बारे में विचार विमर्श करें, और बिना घबराए उसका रिस्पांस दें और बोलें, कृपया आप मुझे आधा घंटा दें, और उसके बाद उस फोन को काट के परिवारजन से बात करके उसके बाद ही कुछ करें। तीसरा, आजकल हम मेजरली पेमेंट करने के लिए UPI QR कोड यूज़ करते हैं, या कई बार आपको मोबाइल नंबर या ऐसे UPI लिंक्स आते हैं, तो इन UPI लिंक पे पैसे भेजने से पहले ये जान लें, समझ लें कि जिस व्यक्ति को आप पैसा देना चाह रहे हैं, क्या पैसा उसी व्यक्ति को जा रहा है या किसी अनजान व्यक्ति को जा रहा है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हम सावधानी रखेंगे, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा।
1: एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सर आपने अभी कही कि एआई का इस्तेमाल करके और आपके रिश्तेदारों या आपके इष्ट मित्रों की आवाज़ भी क्लोन की जा सकती है। तो इस संदर्भ में एक मेरा प्रश्न है कि क्या ये जो स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट टीवीज हो गए, वॉइस कमांड बेस्ड रिमोट्स हो गए, क्या इनका भी इस्तेमाल किसी प्रकार से हो सकता है जिससे आप साइबर सुरक्षा और साइबर फ्रॉड के

0: दायरे में आ सकें।
1: आप मान के चलें ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपका मोबाइल 24 घंटा आपको सुन रहा है, उसमें जो अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आपका मोबाइल आपको सुन रहा है, और अगर आपके मोबाइल से आपका डेटा, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, इंक्लूडिंग जो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो अगर इंटरनेट पर रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई उसको सुन भी सकता है। आपकी आवाज़ कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होती है। तो ये हमेशा जान लें, इंटरनेट पर अगर आपने कभी भी कोई चीज़ डाली है तो वो इंटरनेट से कभी भी गायब नहीं हो सकती पूरी तरीके से। इसलिए ये हमारी सावधानी है कि किस तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन, हम अपने डेटा, जो हमारे परिवारजन, हमारे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उन चीजों को हम कैसे बचाते हैं। इसके लिए हम एक और चीज बोलना चाहेंगे कि जैसे आपका टैबलेट है, जैसे आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कैमरा होता है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, बट ये जो साइबर अपराधी होते हैं वो आपके इन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को हैक करके और आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं, आपके परिवारजन को भी कर सकते हैं। तो अगर इन कैमरास को आप यूज ना कर रहे हो तो कृपया करके ढाक के रखें।
2: ये तो बात बचाव की हुई, अब बात करते हैं समाधान की। सर, यदि कोई साइबर अपराध का शिकार हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी साइबर अपराध का शिकार हो जाता है तो सबसे पहला घबराए ना। समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी शिकार होने के बाद शुरुआत के 72 घंटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस दौरान जल्द से जल्द उस व्यक्ति को शिकार होने के बाद 1930, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 1930 जो साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है, उस पर जल्द से जल्द कॉल करें। अगर आपका कॉल ना लग रहा हो तो आप जल्द से जल्द अपने करीबी पुलिस थाने जाएं और वहां पे जाके एफआईआर फाइल करें। पुलिस वाले अगर कहें हम एफआईआर नहीं कर सकते तो उनसे अनुग्रह करें कि आप कृपया करके 0 FIR फाइल करके केस को साइबर पुलिस थाने ट्रांसफ़र करें। एक और उपाय है, आप घर बैठे नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है एक जो केंद्र सरकार ने निकाला है, आप कभी भी अगर किसी भी साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो उस पोर्टल पे भी जाके स्वयं को रजिस्टर करके आप अपना साइबर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जैसे ही आप अपना साइबर कंप्लेन दर्ज कराते हैं, आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। कृपया करके उसको संभाल के रखें और उस एक्नॉलेज नंबर को लेके आप पुलिस थाने जाएं और एफआईआर दर्ज कराएं और रेगुलरली जाके पुलिस से मिलें और पुश करें कि आपका पैसा सुरक्षित रह सके या आपके जो निजी फोटोग्राफ्स हैं जो पब्लिक में चले गए वो जल्द से जल्द इंटरनेट से हटा दिए जाएं।
2: तो 1930 पर श्रोताओं आप फोन कर सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का प्रयोग करके आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें और घबराएं नहीं। इसमें बड़ा आवश्यक है कि आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग लें। सर, क्या साइबर अपराध से पूर्णतः बचाव संभव है?
1: साइबर अपराध से पूर्णतः बचाव संभव है, हमें बस छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कभी भी कोई भी व्यक्ति के कहने पे इंटरनेट मोबाइल पे कुछ नहीं करना है, कोई भी अपना निजी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। दूसरा, आप हमेशा किसी भी चीज़ को समझें, उसको समय दें, परिवारजनों से, आसपास के लोगों से बात करके समझ के उसके बाद ही उस पर निष्कर्ष निकालें। और हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी करने से पहले सोचिए, जानिए और उसके बाद ही भरोसा करिए।
2: सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमें सुरक्षित रहने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल किसी दूसरे व्यक्ति के बात में नहीं आना है। जो भी कदम उठाना है सोच समझ के और अपनी इच्छा अनुसार उठाना है, समय लेके उठाना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हम सतर्क रहना पड़ेगा।
2: श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में हमारा प्रयास ये होता है कि आप तक सरल और सुगम तरीके से हम लोग वो जानकारियां पहुंचाएं जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। श्री अभिनव गुप्ता सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कानून की बात, जिसमें आज चर्चा का विषय था डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जाने। भेंट वार्ताकार थे श्री अभिनव गुप्ता, इनसे बातचीत कर रहे थे गौरव कुमार, प्रस्तुति थी प्रभु शरण।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से क्रमशः समाचार प्रभात तथा मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: यार सच बता, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
5: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
6: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जैगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना निशाना बनाया गया जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगाम में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता

0: Palestinians. And finally, the front page of Hindustan Times shows beaming faces of Asmita Day and Harsh Singh after winning the country's first ever gold medals in judo at the Commonwealth Games. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth, says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up a fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis, and at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secure double podium finish in men's javelin throw, and win her first ever bronze in decathlon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: राज्य केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उससे पूर्व यह संदेश।
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
5: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत का रास्ता छोड़ने की अपील की। कहा, भटके हुए युवाओं को दंड देने की बजाय सही मार्गदर्शन और सहानुभूति की जरूरत। 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से लगातार तीसरे दिन की 8 घंटे लंबी पूछताछ। 3 अगस्त को दोबारा पेश होने का समन। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज। एनएचएम की बैठक में भीड़ प्रबंधन, दवा वितरण और क्षेत्रीय भाषाओं में हेल्थ चैटबॉट बनाने पर मोहर। राज्य की सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले शुरू होंगी आधार सेवाएं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रज्ञा केंद्रों को और सशक्त बनाने का दिया निर्देश। और झारखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच पद पर हुआ चयन। देश भर के टॉप 20 उम्मीदवारों में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। एक वीडियो संदेश में जंतर मंतर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने भटके युवाओं के प्रति सहानुभूति जताने और उन्हें दंड की बजाय सही राह दिखाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसमें शामिल बच्चों को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी गलतियों से सीख कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 2031 तक के लिए खेलो इंडिया योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पर 36,441 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता का मार्ग मिलेगा। यह योजना जमीनी स्तर से ओलंपिक स्तर तक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करेगी।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा गड़बड़ी मामले में आयोग के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से सीआईडी की पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कल लगातार तीसरे दिन उनसे करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सीआईडी ने उन्हें 3 अगस्त को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य से पूछताछ जारी है। रांची के नामकुम स्थित एनएचएम मुख्यालय में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें अस्पतालों में मरीजों की सुविधा, डेटा कलेक्शन, क्राउड मैनेजमेंट और क्यू सिस्टम को सुगम बनाने में एआई की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। अभियान निदेशक ने कहा कि एआई की मदद से ग्राउंड लेवल डेटा का सटीक विश्लेषण होगा, जिससे क्षेत्रवार बीमारियों के बोझ का तुरंत अंदाजा मिल सकेगा। देश भर में कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे। धनबाद आईआईटी आईएसएम परिसर से इसका सीधा प्रसारण होगा, जहां छात्र नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ लेंगे। युवाओं से आज तक पोर्टल पर डिजिटल संकल्प लेने की अपील की गई है। धनबाद के पॉलिटेक्निक उप डाकघर घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कल लोयाबाद निवासी पंकज चौहान के घर छापेमारी की। समन के बाद भी पूछताछ में शामिल न होने पर ईडी उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। जांच में उसके खाते से 2,89,00,000 रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जामताड़ा में सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हुए हंगामे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान श्री मरांडी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है।
3: झारखंड के छात्र और नौजवान धरने पर, हमारी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी। सरकार यदि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय छात्रों और नौजवानों की जो मांगे, उन मांगों को गंभीरता से सरकार को सुनना चाहिए और समाधान करनी चाहिए।
2: दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैया टांड में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। झामुमो ने राज्य के सभी 24 जिलों में श्रद्धांजलि सभाओं की तैयारी की है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पंचायतों में आगामी 15 नवंबर से पहले आधार सेवाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाएंगी। रांची में आयोजित 17वें सीएससी स्थापना दिवस समारोह में मंत्री ने प्रज्ञा केंद्रों को और सशक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार इन केंद्रों के माध्यम से हर गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाकर अंतिम व्यक्ति को सशक्त कर रही है।
4: सीएससी के साथ पंचायती राज बहुत स्ट्रांगली काम करते हुए आज डिजिटल पंचायत का जो हम लोगों का विजन था वो हम लोगों ने पूर्ण किया है। पिछले दिनों ही जो बैंकिंग और झारनेट की जो सुविधाएं, उन सब से आगे बढ़ते हुए आधार की सेवा अब पंचायतों के माध्यम से मिलने लगी है।
2: पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से हुई करीब 45 लाख रुपए की मोबाइल और लैपटॉप चोरी मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर साहिबगंज के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में आज से 3 अगस्त तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण साई में बैडमिंटन कोच के पद पर चयन हुआ है। हाल ही में जारी चयन सूची में देश भर के 20 उम्मीदवारों में रवि को यह स्थान मिला है। उनकी इस उपलब्धि से राज्य के खेल जगत और युवा खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी भर्ती घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार तीसरे दिन सीआईडी पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी के कुछ सदस्य की भी भूमिका संदिग्ध, समन जल्द। प्रभात खबर की सुर्खी है, 1,08,00,000 रूपये का राज छिपा, वापस मांगी जमीन, हाईकोर्ट ने प्रार्थी पर ठोंका, 12,00,000 रूपये का जुर्माना। सड़क हादसे से दिव्यांगता के एक मामले में हिंदुस्तान के शब्द हैं, हादसे ने छीनी तरक्की, कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा। दैनिक जागरण लिखता है, धड़कता दिल लेकर जिंदगी बचाने चली वंदे भारत एक्सप्रेस। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत का रास्ता छोड़ने की अपील की। कहा, भटके हुए युवाओं को दंड देने की बजाय सही मार्गदर्शन और सहानुभूति की जरूरत। 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगती से लगातार तीसरे दिन की 8 घंटे लंबी पूछताछ, 3 अगस्त को दोबारा पेश होने का समन। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज। एनएचएम की बैठक में भीड़ प्रबंधन, दवा वितरण और क्षेत्रीय भाषाओं में हेल्थ चैटबॉट बनाने पर मोहर। राज्य की सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले शुरू होंगी आधार सेवाएं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रज्ञा केंद्रों को और सशक्त बनाने का दिया निर्देश। और झारखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच पद पर हुआ चयन, देश भर के टॉप 20 उम्मीदवारों में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: Medium wave.
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन।

गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म दोस्ताना का ये गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे फिल्म सागर का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत गुलशन बावरा के हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

0: और इसी गीत के साथ गीत गुंजन समय आगे दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार प्रणाम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं शिक्षा वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जी हाँ, हमारी शिक्षा ऐसी एक ताकत है जो कभी भी किसी से कोई छीन नहीं सकता है। तो इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जवाहर पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री। बातें और भी होगी, मगर सुनते प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते हैं स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से हम सचेत रहेंगे। जैसा कि अभी बरसात के दिन आ चुके हैं और बरसात के दिनों में हमें अपने सेहत पर काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में सेहतमंद रहने के लिए हमेशा उबला हुआ पानी पिए, बाहर का खुला खाना खाने से बचें और अपने घर के आसपास जमा न होने दें पानी। इन जरूरी बातों पर हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रहना है। हमेशा हमें खान पान और साफ सफाई का ध्यान रखना है। हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाना ही चाहिए। पीने के लिए हमेशा साफ और उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें। बाजार के कटे हुए फल और खुले में बिकने वाली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी को अच्छी तरह धोकर या उबाल कर ही हमें खाना चाहिए। कुछ सावधानियां भी हमें रखनी है, जैसे बारिश में भीगने से बचे, गीले कपड़े तुरंत बदलें, मच्छरों से बचने के लिए शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और पानी जमा न होने दें। बाहर से आने पर अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं और साफ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हम बरसात का भी आनंद बहुत अच्छे से ले सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

अभी आप सुन रहे थे जोहार बिलामू, प्रस्तुति स्वर्था पिंकी कुमारी का, संयोजक थे श्री गौरव प्रकाश। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम फिल्म संगीत के तहत लाए हैं लता जी के गाए गीतों को, तो आइए सुनते हैं इनके गीतों को।

और इसी गीत के साथ गीत संगीत से हमें आके दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लता मंगेशकर की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां सब सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पल।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मिता डे और हर्षिंग ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस बीच तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हीराकुंड जलाशय का जलस्तर बढ़कर 625 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। जल नियंत्रण के लिए 22 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय तन्वी खुराना।

रम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यही मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़ सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया है।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझसा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह। और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला, बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई। सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल के रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ, आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तल विचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

ए ताई, दादर उतराएजा तुला। पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहां कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले, और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच। वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: मैटिनी शो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसने क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का।
1: धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से।

0: नमस्कार। ये आवाज़ तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। और अच्छा लग रहा है, जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब।
1: क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूं, और एक चीज और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूं कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं। अपने बचपन के बारे में बताइए।
0: नहीं देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे, 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे।
1: कौन सा मोहल्ला था वो?
0: वो इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर
1: जी
0: कहते हैं, वहाँ रहते थे। और 4 भाई हम लोग, और माता पिता मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहाँ से शुरुआत की यात्रा, और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े,
1: जी जी
0: मास्टरों की रोज मार खाई और
1: जी
0: मुर्गा बने।
1: हाँ
0: लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते पर था, और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है, मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी। मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे।
0: अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं, वो
1: जी
0: क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी, तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में
1: जी
0: फोटो आते थे। एक पत्रिका में कभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो, और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था,
1: जी
0: और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते।
1: वाह,
0: एक दिन पकड़े गए,
1: अरे
0: और
1: बाप रे,
0: पकड़े गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने 2 चपत लगाई
1: वो
0: और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया। लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं, उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है, क्योंकि घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये कल से नहीं कर पाएंगे।
1: जी
0: तो देखिए कई बार मैं सोचता हूँ कि आज जब पद्मश्री मिल गया या जिंदगी में आप हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे,
1: जी
0: बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं।
1: जी बहुत प्यारी बात है। इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे।
0: बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं और गाने गुनगुनाते हैं ना,
1: जी
0: मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाना था।
1: ओ
0: मतलब आप समझिए कि लोग अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। FPS सिस्टम का खेल, यानी कि फुट पाउंड सेकंड,
1: बिल्कुल
0: 22 यार्ड से जो खेल शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कॉमेंट्री करते थे, और उनकी शैली में, जॉन ऑर्लट हो,
1: हाँ,
0: एलन मैगिलवरी हो, या ऐसे बड़े बड़े कॉमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते हैं,
1: और
0: उनकी,
1: बैरिटोन एकदम वो।
0: हाँ उनकी मोटी आवाज में वैसे ही निकाल कर मैं
1: जी
0: वैसे ही कॉमेंट्री करता था, लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था।
1: वाह
0: तो
1: वाह,
0: ये एक वहां से शौक हुआ, और बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा,
1: जी
0: लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज आगे जाकर विकसित हो गई।
1: बिल्कुल। तो पिताजी का क्या रवैया था?
0: नहीं देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए मैं पढ़ने में सबसे कमजोर, दुबला पतला, 48 किलो, जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो ही वजन था। तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज्यादा प्यार था। हमारे दूसरे 3 भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से,
1: जी जी,
0: मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला, उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमजोर है, इसको

0: हमारी मदद की जरूरत है।
1: ओके
0: और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये अगर इसको हिंदी में और इसमें ज्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूं, तो क्रिकेट मेरी किताबों में वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर।
1: अरे गजब।
0: और बड़ी मदद की, और उस समय तो पता नहीं था। लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनाओ की टीम भारत आई। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी रिची बेनाओ की, वो विश्व विजेता टीम थी और दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था। बड़े बड़े खिलाड़ी रिची बेनाओ, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था
1: जी,
0: मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी, पता नहीं क्यों, मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो मुझे बम्बई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
1: इंदौर से बम्बई ले गए।
0: पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहां से बम्बई, बम्बई कहते थे जब बम्बई जाने का, बम्बई गए। उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे हैं, और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बम्बई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए। और वहां जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम
1: जी
0: के चक्कर काटते थे, और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। 4थे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई
1: जी।
0: उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है, और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप रे।
0: अब देखे आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं
1: जी।
0: मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में।
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और ढोल मजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर।
1: वाह।
0: तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं,
1: लेजेंड लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह है। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहां बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपने जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई।
1: 12 बरस लग गए।
0: तो 12 बरस लग गए। आप देखिए कि कैसे ये काम हो। इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो।
1: वाह वाह।
0: अगर बंद आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब इसमें दो बातें हुई साहब, देखिए यूनुस जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम न हो जाए वापस आने पे, इतनी भीड़ भड़के में
1: जी
0: बम्बई के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज्यादा खुश मेरे पिताजी थे कि चलो बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही है। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया, बचपन के एक बाबूजी थे अच्छे प्यारे

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी?
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही जैसे आपने कहा,
0: और पढ़ाई साथ में चलती,
1: पढ़ाई साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था, मेरा हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा
0: जी,
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने, और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली, तो ये तमाम चीज़ों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही। हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहाँ से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी। और
0: यहाँ बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं।
1: हाँ जी,
0: जब वो धर्मियों के

0: संपादक थे।
1: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968-69-70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी, तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफ़ी लिखवाया भी। तब धर्मयुग, घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफ़ी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
0: वाह वाह,
1: तो ये जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायत होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल, तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है।
1: हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं, हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे और ये कमजोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ, लेकिन ये समझिए कि 5 साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ मैं, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं इंजीनियर हूं।
0: जी जी,
1: तो इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीजें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है।
0: बहुत सही,
1: तो ये आपको चीजों को ग्रहण करने में मदद देती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया, कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीजें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग कि पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर हैं,
0: वाह
1: ये गलत बात नहीं करेंगे। तो ये भी एक जरा एहसास रहता था मन में
0: जी,
1: कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं
0: जी। आपके बचपन किशोरी युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
1: नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने कर्नल सीके नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्मभूषण जो अकेले पद्मभूषण क्रिकेट के उस समय, पहले वाले पद्मभूषण उस समय, तो उनके घर पे भी काफी जाता था, उनके परिवार से काफी रिश्ता था, और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय, इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, अपने समय के भी काम थे। जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहां पर कोई अकेले बीकॉम रहे होंगे, तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, कि छोटे वाक्य ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा यह कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज़ मेरे मन में गहरे तक समा गई थी, और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की, तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा, और इसी कारण मेरी हिंदी जो लोग कहते हैं काफ़ी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि शायद शुद्ध रही होगी
0: जी। अपने बचपन के जमाने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीजों का बताया, ये यहां थी, यहां अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहां हिंदी फिल्में लगती थी, यहां मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा?
1: नहीं बहुत ज्यादा, बहुत, मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था।
0: गजब, कुछ
1: बहुत, मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था, कि कोई भी याद, बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पड़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहां अब तो रहे नहीं टाकेज, तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन गई हैं, लेकिन वहां जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई
0: जी,
1: कई बार मुलाकात हुई, एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे, और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति है। जावेद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सलीम साहब से जरूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आए तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के तो और क्या दिलकश आदमी,
0: वाह,
1: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
0: वाह वाह,
1: और क्या आवाज उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं है उनका
0: जी।
1: वो दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था,
0: क्या
1: तो वो कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान,
0: हाँ।
1: वो पूरा उन्होंने वैसा का वैसा सुनाया।
0: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे,
1: बहुत बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग, तो जब भी
0: आप मुझे शामिल कर रहे हो
1: तो बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग
0: जी
1: मिल गए,
0: बिल्कुल,
1: और इनके साथ खूब बात करनी चाहिए, और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत दिलचस्प।
1: नहीं, देखिए, स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ इंदौर में, वहाँ जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता है। तो ये तमाम चीजों की समझ जब आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
0: यस,
1: तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें। ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें, थोड़ा महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती है, वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं।
0: जी,
1: तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए।
0: yes.
1: और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है।
0: बिल्कुल.
1: इसको सही बोलिए, और सबसे बड़ी बात व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। ये तमाम चीजें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है।
0: yes.
1: और मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूं कि भाई आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती, वो बता सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिप और एक गली रखे थे, शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा। ये तमाम चीजें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें। लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, देश की भाषा खराब करने का। ये नहीं समझें कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग,
0: नहीं नहीं,
1: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना, उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं जहां पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
1: नहीं, सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था
0: जी,
1: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री जरूरी है। और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सब ने कहा कि बेवकूफ़ी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल 22 यार्ड्स से जो शुरू होता है उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि
0: आकाशवाणी इंदौर
1: में, हाँ, मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था। और मैं वहां पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर से कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री कर सकता हूं और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट,
0: ओहो
1: क्योंकि पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच बिल्कुल सही था। उस समय कमेंटेटर्स 50 55 60 साल के होते थे
0: और आप 18 के थे।
1: मैं 18 साल का था, तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा, क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी। तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढकर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा। अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं, जॉन ऑर्लट की शैली में बताऊं, एलन मिगलबरी की शैली में बताऊं, या ब्रायन जॉनस्टन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी, अच्छा हुआ नहीं सुनी थी। अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं। लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
0: क्या बात।
1: तो उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की, और उन्होंने कहा कि नहीं ये चलो चला तो लेगा ये लड़का काम, तो मैं कमेंट्री की। और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई। किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते। और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी। लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो, अच्छा काम करो, क्रिकेटर करता क्या है उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल चाल कैसी चलती, क्या

0: करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है चार रन के लिए।
1: वाह वाह,
0: ऐसा जब सोचा ना तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
1: रिदम आया,
0: शैली भी बन गई, शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं चार वाक्य बोलता हूं लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया, और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी भी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था कि ये किसी ने भी कभी सोचा नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं,
1: सीमा
0: तो तमाम चीजें, ये सब तकनीकी चीजें हिंदी में कभी थी नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं। मेरी पत्नी का नाम रेखा है।
1: अच्छा,
0: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए ऐसा बोलता था। मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं। सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर चार रन के। ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही।
1: अच्छा,
0: बोले रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है?
1: क्या बात है, शानदार बात है। यहां ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं।
0: अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि
1: जी जी, किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
0: नहीं, जॉन ऑर्लेट बोलते थे जैसे कि फ्रेडी ट्रूमन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सल लैंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर एंड गावस्कर फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैक टू द बॉलर नो रन।
1: वाह, क्या ग्रेन्स, और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी?
1: नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां। एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है,
0: जी
1: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो, लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो, कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राज भाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई, और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए, राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहां जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
0: गजब।
1: तो देखिए, उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली।
0: उल्टा हुआ था।
1: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई, कि
0: जी
1: आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। और सच मानिए, लोगों को ये बात पसंद आती है
0: बिल्कुल।
1: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती हुई, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
0: क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
1: नहीं, 1972-73 का जो मैं
0: जी
1: आपको जिक्र कर रहा हूं,
0: ब्रेबोन
1: ब्रेबोन स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिंपल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साइन नहीं की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
0: जी,
1: दोनों दिख रहे, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे,
0: वाह वाह, डेविड
1: डेविड,
0: अब्राहम
1: हाँ,
0: जी।
1: तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने
0: जी
1: कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग,
0: हाँ
1: कि अब मैं भी छोटा था ना,
0: जी
1: 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच करता था। और सच मानिए, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए, तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए। तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था। और अब कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39, जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
0: जी जी
1: है ना, 69 को,
0: हाँ
1: तो वो शुरू शुरू में गलती

0: होती थी, लोगों ने काफी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो। कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था,
1: जी,
0: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं? और उन्होंने उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला चलता रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्रिकेट कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह, तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है।
1: बिल्कुल
0: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं, उनको पता नहीं हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है अधिकांश। उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं,
1: जी
0: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ें भाई,
1: बिल्कुल
0: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा। संतुलन तो आप कैसे आएगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस। तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता है, संतुलन कैसे आएगा, निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी। आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है, भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा, भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो।
1: बिल्कुल
0: रिची बेनो ने भी कहा है कि आप निष्पक्षता बरती है, कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं हैं, तो ये एक बात समझने की है।
1: बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी। और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहां पर गाना आएगा। ऐसा ही

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के

0: युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मदन मोहन की तर्ज पर लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना साहिल लुधियानवी के बोल थे, गजल फिल्म की ये प्यारी सी गजल आपने सुनी।
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

सुमन कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को सुर में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हंसुजयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है,
5: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
6: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
6: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
6: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: चुप रहूंगी। इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यही संपन्न होता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है, एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा दीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस

0: स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमुज दबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. Mr. Modi also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by the officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant culture of North Andhra. We'll now go live to the Prime Minister's address.
3: నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుతో ప్రజాసేవకు దేశ సేవకు కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని తెలియజేస్తున్నాను.
4: సాథియో, బీతే 12 ఇయర్స్ మే దేశ్ కే ఏవియేషన్ సెక్టర్ నే అసాధారణ ప్రగతి కీ. 2014 తక్ దేశ్ మే కేవల్ 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है।
2: Later, the Prime Minister will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Center of

0: Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka. The memorial commemorates the historic visit of one of the greatest spiritual leaders of India, Swami Vivekanand, to Mysuru in 1892, when he met the Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the United States to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees. Price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata will now be 2,872 rupees and 50 paise, and in Mumbai it will be 2,691 rupees 50 paise, and in Chennai 2,906 rupees. The new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. In Jammu and Kashmir, the second labourer injured in the terrorist attack in the Kelam area of Kulgam district succumbed to his injuries this morning, taking the death toll to two. The two labourers working at a brick kiln were fired upon by unidentified terrorists last evening. Soon after the incident, the area was cordoned off and a massive search operation was underway to trace the terrorists. Chief Minister Omar Abdullah has announced an ex gratia of 10 lakh rupees each from the Chief Minister's Relief Fund for the next of the kin of the deceased, in addition to 6 lakh rupees immediate assistance to be provided by the Kulgam District Administration. The Election Commission has revised the schedule for the special intensive revision of the electoral rolls in Telangana. The Commission said the revision of the schedule has been carried out following a request from the Chief Electoral Officer of Telangana. According to the revised schedule, booth level officers will conduct house-to-house verification till the 10th of this month. Rationalization and rearrangement of polling stations will also be completed by the same date. The draft electoral roll will now be published on the 17th of August. The period for filing claims and objections will continue from 17th of August to 16th of September, while the disposal will be completed by 15th of October. The final electoral roll will be published on 19th of October. The India Meteorological Department, IMD, has said that rainfall over the country is likely to be below normal during the second half of the southwest monsoon season. The IMD said rainfall is expected to be less than 94% of the long period average in this month. The weather agency added that these conditions are expected not to prevail over many areas of eastern peninsula India, some areas of northwest, central India, and isolated areas of east and northeast India. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। राज्य में खात्मे की कगार पर नक्सलवाद। साल 2021 से अब तक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से जब्त किए 972 आधुनिक और देसी हथियार। रांची के रिम्स में राज्य की पहली प्रसव पूर्व आनुवांशिक जांच सुविधा शुरू। गर्भ में ही सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों का लग सकेगा पता। कोयला के बाद अब टेक्सटाइल हब बनेगा धनबाद। स्थानीय महिलाओं और युवाओं को मिलेगा बड़े पैमाने पर रोजगार। पलायन पर लगेगी रोक। और रांची सहित कई जिलों में कल से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। पश्चिम सिंहभूम को छोड़कर बाकी राज्यों में सामान्य से 26% कम वर्षा रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में धांधली रोकना है। कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए जुर्माना और संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी। राज्य में सुरक्षा बलों के कड़े अभियानों के कारण नक्सलवाद अब पूरी तरह खात्मे की कगार पर पहुंच गया है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार पिछले 15 वर्षों में पुलिस ने न केवल नक्सलियों से अपने लूटे गए हथियार वापस लिए बल्कि उनके गढ़ों

0: को भी ध्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि साल 2021 से जुलाई 2026 तक चले विशेष अभियानों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से कुल 972 आधुनिक और देसी हथियार जब्त किए हैं।
1: जो नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं या जो नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं उनसे पुलिस लूटेड हथियार, उसका एक डेटाबेस झारखंड पुलिस के द्वारा बना हुआ है। भारत सरकार के द्वारा भी इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें देश भर के पूरे पुलिस लूटेड हथियारों का ब्यौरा उसके अंदर होता है। और जैसे कोई छत्तीसगढ़ पुलिस का कोई वेपन हमारे पास है तो हम वो रिक्वेशन हम लोगों को करेंगे, हम लोग उनको दे देंगे, हमारा वेपन उनके पास है तो हम लोग उनको रिक्वेशन करेंगे। और लगभग 1000 पुलिस लूटेड वेपन्स है जिनका डेटाबेस हमारे स्पेशल ब्रांच।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म जमा न करने वाले 43,68,000 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि फॉर्म जमा न करने वाले अधिकांश मतदाता हटिया, रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर पूर्वी जैसे क्षेत्रों के हैं। प्रभावित लोग 5 अगस्त के बाद अपनी दावा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
2: ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो एनजीडी का संख्या थोड़ा सा कम है, शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में अर्बन का माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है, वोटर्स का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। फिर बाकी जगह पर भी आपका वो सूची है, वो अपने बीएलओ का बैठक में फाइनल हुई थी, उसके बाद वो 5 अगस्त के बाद कोई आपत्ति होगी मतलब उसका निराकरण।
0: रांची के रिम्स ने प्रसव पूर्व अनुवांशिक जांच की सुविधा शुरू कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के जेनेटिक्स विभाग में अब गर्भ में पल रहे शिशु में सिकल सेल, थैलेसीमिया और डीएमडी जैसी गंभीर जेनेटिक बीमारियों की जांच हो सकेगी। धनबाद के निरसा अनुमंडल में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़ किया है। निरसा एसडीपीओ लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में पुलिस ने बीसीसीएल के एक जर्जर क्वार्टर में छापेमारी कर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित लॉटरी, प्रिंटिंग मशीन और उपकरण जब्त किए हैं। मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। देवघर का विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है और सावन के शुरुआती 3 दिनों में ही करीब 2 लाख कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ का जलार्पण कर लिया है। मेले के दूसरे दिन सर्वाधिक 1,05,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। कांवरिया पथ पूरी तरह केसरिया रंग और बोल बम के जय घोष से गुंजायमान है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोयला नगरी धनबाद के बेलगड़िया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एंट्री से स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। इस नई उद्योग इकाई के शुरू होने से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और महिलाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित हो रहे इस क्षेत्र से न केवल पलायन रुकेगा बल्कि धनबाद की अर्थव्यवस्था को कोयले से अलग एक नया औद्योगिक विस्तार भी मिलेगा।
3: टेक्सटाइल कंपनी से कराए हुए हैं, राजधानी टेक्सटाइल बिरला ग्रुप से, और हम लोग बेलगड़िया में जमीन चिन्हित कर लिए हैं। धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1500 से 2000 लोगों की कैपेसिटी का प्रॉपर टेक्सटाइल पार्क बन, ताकि वहां रहने वाले कम से कम 2000 लोगों को वहां पर रोजगार मिल सके।
0: कोडरमा वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए स्नेक रेस्क्यूअर प्रशांत तिवारी को विशेष किट देकर सम्मानित किया है। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सौमित्र शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में घरों के आसपास सांप निकलने पर उन्हें मारे नहीं बल्कि रेस्क्यू टीम को 8789356215 नंबर पर सूचित करें। उन्होंने सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक की बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज कराने की सलाह दी है।
4: जब भी सांप अगर आपको घर में आसपास कहीं निकल रहा है तो जो भी स्नेक रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं इनसे संपर्क करें या वन विभाग की टीम के भी थ्रू

0: जो और लोग भी सांप पकड़ते हैं उनसे संपर्क करें, और अगर खुद आप दक्ष नहीं है उस चीज में तो सांप को डायरेक्टली हैंडल ना करें।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर साइक्लोनिक सर्कुलेशन खिसकने से झारखंड में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल कुछ धीमी पड़ गई है। हालांकि कल से रांची सहित कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में इस सीजन में अब तक सामान्य से 26% कम वर्षा दर्ज की गई है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपने अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। राज्य में खात्मे की कगार पर नक्सलवाद। साल 2021 से अब तक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से जब्त किए 972 आधुनिक और देसी हथियार। रांची के रिम्स में राज्य की पहली प्रसव पूर्व आनुवांशिक जांच सुविधा शुरू। गर्भ में ही सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों का चलेगा पता। कोयले के बाद अब टेक्सटाइल हब बनेगा धनबाद। स्थानीय महिलाओं और युवाओं को मिलेगा बड़े पैमाने पर रोजगार। पलायन पर लगेगी रोक। और रांची सहित कई जिलों में कल से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। पश्चिम सिंहभूम को छोड़कर बाकी राज्यों में सामान्य से 26% कम वर्षा रिकॉर्ड। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा मौन समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है लता मंगेशकर जी की आवाज़ और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज़ देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी

सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग है। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिब जान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पूरा जीवन इसी तरह खत्म हो गया चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूंगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें,

और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की, उन उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं, और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था आजाद फिल्म से। आजाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओं? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती है, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थी। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है। जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पांव मैंने देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ज्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में

लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आजाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नजर आती हैं और खिलखिलाती हुई नजर आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज ये फिल्म थी।

ये आवाज़ आपको पहचाननी है श्रोताओं की, इस गीत को किसने गाया? नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा, रोशन की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओ मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थी उनमें आजाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का जमीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती, बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ?

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोता, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं।

तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। वो उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

मीना कुमारी जी बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जरूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिजा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज में है, ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज कौन सी है, मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है।

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगीरात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हूं।

खूबसूरत फिल्मों के अलावा श्रोताओं, भाभी की चूड़ियां, जिंदगी और ख्वाब, प्यार का सागर, आजाद, बहाना, चिराग कहां, रोशनी कहां, यहूदी की लड़की, मिस मैरी, शारदा, फूल और पत्थर, ये और फिल्में थी।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है, जहां तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से 1 से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था, इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक दो दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी में लता मंगेशकर और सखियों को शैलेंद्र के बोलते शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

नवनिगार शकील बदायूं मासुकार हेमंत कुमार गीता दत्त की आवाज में साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म अर्धांगिनी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला वसंत देसाई ने। और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज़।

0: अलबेला फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबद्ध के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओं, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीर शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आइलर नगर केटगांव से इसी गीत को पसंद किया बाबू साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परवणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलेक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की, ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने, और जीसीएफ स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर, और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हमसफर। इस फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से कुमार प्रथमेश प्रणाली, कड़ा रोड से कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से। विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है। महेंद्र नागेश, पारस जयेश, ऋषभ संयम, सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, सहल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यह है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधु शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: और ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जहाँ मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: तभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूं अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है, किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है।
1: हाँ,
0: अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नथालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो
0: जी,
1: कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूं? कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहां है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूं? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नितालिया को भेजता हूं।
0: जी। चोबोकोव चले गए, अब नितालिया आएगी। क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी भाई आंख फड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमोव विराजमान है।
0: आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी,
2: आपके लिए कुछ खाने को लाओ।
0: जी जी जी, जी आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है। आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
0: जी,
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया।
2: जी,
0: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल लाऊं?
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है? आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
0: देखिए कुमारी मिथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
0: जी,
2: क्या क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों
2: यूं नहीं सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं भला, इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बगीचा हमारा है।
0: अजी, मैं चेरी को उस बगीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बगीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बगीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे, मगर वो बगीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
0: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी मिताली, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
2: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
0: मैं जानता हूँ कुमारी निकालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
2: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी,
2: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती।
0: कुमारी निकालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
2: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बगीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकालिया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें
2: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी
2: है।
0: जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
2: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना जोरी। कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
2: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
0: ओ, मेरे गले में कांटे उगे हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
2: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
0: जी नहीं, वो मेरा है।
2: वो बगीचा हमारा है, और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
0: क्या?
2: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
0: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
2: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
0: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बगीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
2: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
0: कुमारी निकालिया, कुमारी निकालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
2: नहीं, हमारा है।
0: जी नहीं, मेरा है।
2: हमारा है।
0: मैं कहता हूँ मेरा है।
1: जी क्या हो रहा है?
2: बाबा, आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
1: हमारा है और किसका?
0: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था, और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
1: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
0: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
1: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
2: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
0: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
1: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
0: क्यों नहीं कर सकता?
1: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपों मचाकर ये साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे
0: दूंगा। जी हाँ क्यों नहीं, बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं, क्या अधिकार है आपको?
1: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
0: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
1: यूं ही आवेश में मत आओ।
0: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं
1: हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
0: मैं तो जैसे आपके आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूं आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं।
1: क्या कहा?
2: बाबा बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
1: अब मैं इसे क्या कहूं?
0: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
2: बाबा आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
1: मैं कुछ करूं?
2: हाँ।
1: लेकिन मैं क्या करूं?
2: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाए।
0: खोद लाए? कुमारी नतालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
1: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
0: आप मेरी यूं खिलना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
2: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
1: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
0: हाँ, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा।
1: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
0: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
1: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
2: इनके घराने में ठीक किसका था?
1: हाँ, इसका दादा संकी।
0: हाँ, दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
1: अरे तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
2: आपकी नानी के मुंह में जब्बा नहीं ततैया मिस थी और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
0: मेरी बही ढंग था जनजान लगे और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल को, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी कहाँ है?
1: अरे तुम मक्कार हो, अरे भी।
0: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही टोपी, अब दरवाजा की तरह मेरी टांग सुन हो गई।
1: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहां से।
0: हाँ हाँ, जा रहा हूं।
1: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं नहीं, टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
2: और अब यहां से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
1: चला गया कमीना कहीं का।
2: हमें इस बीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
1: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
2: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठ जाएगा।
1: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
2: कैसा प्रस्ताव?
1: अरे ब्याह का प्रस्ताव, कमीना जलील गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
2: पहले क्यों नहीं बताया?
1: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
2: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
1: अरे अरे, क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
2: बाबा बाबा, उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
1: क्या, अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
2: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
1: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
2: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
1: अरे बेटी नितालिया, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? भगवान, अब मैं कहाँ डूबने जाऊं?
2: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
1: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
2: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हम सम्मान किया। कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
4: निटालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा। तुम जानो और वो जाने।
2: वो कब आएंगे?
4: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
2: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
4: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
2: कैसे?
4: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया। और अब
2: क्या क्या मेरे कारण?
4: और नहीं तो क्या?
2: बाबा, अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
4: अच्छा बाबा, अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो, वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
0: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है।
2: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
0: वो बगीचा मेरा है।
2: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
0: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बागीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
2: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई। आप कृपया क्षमा करते।
0: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
2: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब कोई और बात कीजिए।
0: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
2: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
0: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
2: क्यों?
0: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
2: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ।
0: जी,
2: मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
0: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
2: डब्बू आपने लिया किससे था?
0: अजी, ये पहले मेरो नोव के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोव इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरो नोव के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ ना कह सका।
2: 125 रूबल?
0: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
2: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
0: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
2: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे। नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
0: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
2: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
0: जी
2: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। हाँ। एक बुरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
0: तो सुन लीजिए कुमारी निथालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
2: जबड़ा छोटा है?
0: जी,
2: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
0: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
2: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
0: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
2: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
0: जी
2: किस राज घराने में से है, किस कुल का दीपक है?
0: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
2: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
0: मैं ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा?
2: आप होंगे। होंगे क्या, आप हैं
0: जी।
2: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
2: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
2: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए कि आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
2: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
2: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा
0: दूं। और मेरा बस चले तो मैं वही गोली, मेरा दिल फिर डूबने लगा।
2: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
2: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से हजार गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं
0: हूँ। यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, गणपति।
2: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वा कर अमर हो गया है, और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: ओ, मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
2: अब मैं चुप नहीं हूँ।
4: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
2: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
4: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है?

0: और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
1: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
0: आइवन ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
1: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा।
2: दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
0: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
1: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
0: आइवन मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
1: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए।
0: तुम्हारा तो सर फट
1: गया। देर ही कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
0: मूर्ख क्या,
1: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
0: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाद आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
1: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। अरे मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
0: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
1: मेरी टांगे टूट गया। डॉक्टर
2: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन बाबा, आइवन चले गए।
3: क्या नितालिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल फिट नहीं रहा। बेटी तो मेरा एक काम करो।
2: क्या बाबा?
3: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
2: जाने दीजिए बाबा, अब मरे को क्या मारेंगे।
3: अरे बेटी मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
2: अपने लिए?
3: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
2: नहीं नहीं नहीं बाबा नहीं।
3: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
0: हाँ तो ना,
3: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
2: जिंदा है।
3: लो लो पानी पी लो, पानी पी लो।
0: मैं कहाँ हूँ?
4: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हा? अब तुम घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
0: हा? क्या?
4: हाँ बाबा, हाँ नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
0: क्या सच?
4: चुप चुप नितालिया, बेटी लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
2: बाबा
4: आइवन जी, ये लो नितालिया का हाथ, मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़।
0: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
4: अच्छा?
0: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
2: जी मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
4: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
0: हाँ याद आ गई, ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है।
0: जी नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहता हूँ घटिया है।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
4: तुम लोग
0: भी है।
4: जी है। मैं

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे,
3: हाँ,
2: और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, हाँ, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
2: हाँ,
3: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, तक तक तक तक, और प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है। समझ गए
2: जी।
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था
2: जी।
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ वो जैसे गोरी चोरी।
4: जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आतंकवादियों की तलाश जारी है। राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। इस फैसले

0: से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ओडिशा में महानदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। निचले इलाकों में कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। इस बीच मौसम विभाग ने मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में प्रीति पवार और जैस्मिन लैम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में, वहीं जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में यह पदक अपने देश के नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये थोड़ा टाइम लेने लग गया, क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
2: जी,
1: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी। तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं
2: बिल्कुल,
1: तो हम लोगों उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
2: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
1: हाँ, ये पहले किसी और के था और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की कृपा होती है जी। उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
2: बिल्कुल
1: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
2: पामिला जी,
1: हाँ प्रेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज्यादा बेटर है,
2: मिलता है,
1: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे, इतने में यश जी आ गए, यश जी आते हम दोनों चुप हो गए। तो हम दोनों को देखते यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं बोलो तानसेन क्या बात है, मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो, मैं बोला अभिजीत ज्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूजिक का हमारा नहीं है, म्यूजिक का काम है म्यूजिक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया, तो ही इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहे हैं कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तानसेन जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
2: क्या बात, और बहुत शानदार गाना गाया उस,
1: नहीं नहीं बहुत अच्छा
2: आवाज में जो सैफ अली साहब की आवाज
1: सूट हुई, और
2: बिल्कुल सूट हुई
1: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का, उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, पर जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था आई। तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है। हाँ। जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ, मगर पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भड़के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोरदा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आरडी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात किशोरदा उस वक्त जिंदा थे
0: और आरडी बर्मन साहब
1: और आरडी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार। तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं

0: खड़ा होकर उनके पैर छूने के, बोले नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सेन साहब के लड़के बहुत मजा, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आया, अमित नहीं आया, इतने में अमित नहीं जाएगा। तो उनको बोला देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं ना ये, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही।
0: और उसके बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही
1: जी,
0: तो जिसका वो गाना था हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना दिल से दूर
1: जी,
0: और नीरज साहब के साथ में एक पिक्चर की जाना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था जा

0: मेरे नूर।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए,
1: वाह वाह सुंदर।
0: हाय।

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने, सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत।
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। माया
1: गीतकार माया गोविंद के साथ
0: गोविंद
1: आपने
0: जी के
1: काम
0: साथ
1: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: नहीं,
1: माया
0: उनमें एक
1: गोविंद,
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी।
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था। इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी रे तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये
0: वो
1: था।
0: ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का?
0: नहीं
1: आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये, क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया, और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखा आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से।

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहां दिल में नहीं लगोगे।
0: सही क्या?
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है।
0: जी, जी।
1: तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूं कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूं कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूं, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते।
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा जी, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते सुखविंदर, बाली ब्रह्मभट्ट,
0: अरे क्या,
1: जोली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पेमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
0: पूर्णिमा के नाम से,
1: पूर्णिमा जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं
0: जी,
1: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
0: नहीं नहीं वो बात नहीं,
1: वो उनको पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट,
0: और
1: कि यार वहां जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना,
0: और कला के प्रति समर्पण,
1: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
0: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
0: तुझे चाहना मेरा काम है,
1: जी।
0: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है दिलीप
1: जी, जी,
0: संसार
1: जी, जी,
0: जी।
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है? और
1: नहीं, हम केसर सेन की औलादे हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में, लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी,
1: फोक कहते हैं आमद को। एक चीज आमद होती है, तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सू आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके जॉइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं, मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे के
0: कई गीतों में आपने प्रयोग किया?
1: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी,
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, मैं किया ते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडॉप्ट किया उस गाने को, हम मेरी चोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
0: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वही
1: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक चुने के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहां हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वेराइटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए, आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं यार ये दिलीप सेन जा रहा है, या नहीं अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं, आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जी तब लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे।
0: जी, चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना?
1: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
0: बहुत सुंदर गाना,
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी 5वीं पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला,
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 4 जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक
0: अच्छा
1: 4 पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत में रहा है।
0: जी जी
1: और 5वीं पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे
0: गए
1: भी आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द। जी
0: जी तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत

0: की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए, कविताओं की मालूमात रखनी चाहिए, भाषाएं हमें जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 रागे या 50 रागे या बेसिक 2-4-5, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो 4-5 रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
1: उसे रखिए,
0: उसे आप कायम रखिए। क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है, हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है, प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
1: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश
1: मैं
0: हो।
1: आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूँ कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी,
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटाट जब प्रभाव वितस्थले वीरो विलंब विलंब भुजंग तुंग मार जटाट विगल ज्वल प्रभाव वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर के झपेट दिल दुष्ट को दपेट चल पेट चकल न बजे नक चला तो दिन तो होता कटा कट गिरी से न पटा पट पटी पटी पाट कभी गुह की लकार की ले जू हो जी लकार पड़ी भीड़ भी लगा कटे रखे जनी दान तह तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारा सीताराम को उजारू रघुवंश को अनियारो जन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंड दंड न उमन न सुख न नया कल को भूपत सर तो को ना वेलो अल बेलो न रेलो रूप लेलो चल राके सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खले खानी चांदी पति सो कमंडी कुल खानी देने कर को, ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, जो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है, कहीं का नहीं, ये हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा, चले मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।

0: क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हाय हाय
0: कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए 100 निःशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके लिए 3 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, ट्राइबल फैशन शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भव्य आदिवासी शोभा यात्रा शामिल है। दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। झामुमो ने राज्य के सभी 24 जिलों में श्रद्धांजलि सभाओं की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैया टाड़ में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी की 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्य आयोजन स्थल पर करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। जमशेदपुर के 2 मुहानी नदी संगम तट पर 1 पौधा भविष्य के नाम अभियान के तहत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर दोनों ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित घोटालों और अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज गिरिडीह में आक्रोश पैदल मार्च निकाला। पपरवा टांड से शुरू हुआ मार्च समाहरणालय पहुंचा, जहां प्रदर्शन के बाद उपायुक्त रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपा गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल मूरी रेलखंड में तिरुलडीह और बकारकुड़ी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक चानो गांव का निवासी था और कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रांची पुलिस ने शहर के प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर व्यापक सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी तथा सीसीटीवी, बाइक पेट्रोलिंग और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मस्ती से बहती पवन झूम झूम के डोले, जब बरखा की हर बूंद तन में हलचल सी कर जाए, काली घटाएं बादल बन बरसे, जब बावरा ये मन झूम झूम के गाए।

सावन बहका है, बूंदों पर है खुमार, मनवा भी बहका है, बागों में मेले हैं, झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं, शायद सावन भी कुछ कहता है।

चुनरिया जब थानी प्रकृति करे श्रृंगार, मोती बरसाता गगन सोना उगलती धरा, नए रंग के ये ऋतुएं मनमोहक आलम सी है छटा, चारों ओर छाई मदहोशी सावन की।

बहती हवा ने तेरी खुशबू बिखेर दी, रिमझिम फुहारों ने जब तेरे जुल्फों का साथ छोड़ा, भीगी रात में तेरा करीब रहना, ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों में तेरी सांसों का घुल जाना।

की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, आज फिर भीग जाने को हम हैं बेकरार, तुझे पाने की चाहत में।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे 103 मेगाहर्ट्ज पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्य।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:35 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। किसानों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा शाम 6:02 पर।

कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा आप सुन सकेंगे शाम 6:30 से। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि का समय होगा शाम 7:15 से। विज्ञान जगत की बातें आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर। रात्रि 8 हम शामिल होंगे अपने दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में। रात्रि

4:05 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से। विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष आप सुन सकेंगे 8:30 पर। समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज एट 9 9:00, उर्दू में खबरें 9:15 पर, 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। 10:00 आप सुन सकेंगे रजनीकांता कार्यक्रम। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे 11:10।

युवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज दोस्तों आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। तो दोस्तों आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी चर्चा का पहला विषय है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इनके बारे में बातें करेंगे। दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद, पत्रकार और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उनका पूरा जीवन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए समर्पित रहा। तिलक जी का सबसे प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे ने पूरे देश में स्वतंत्रता की नई चेतना जगाई। उन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और अंग्रेजों के अन्याय का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। लोकमान्य तिलक का मानना था कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और युवाओं में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। वे चाहते थे कि भारत में युवा शिक्षित, जागरूक और देशभक्त बने। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने केसरी, मराठी और मराठा अंग्रेजी नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों में प्रकाशित उनके लेख अंग्रेजों शासन की नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। इसी कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ता था। लोकमान्य तिलक ने समाज को एजुकेट करने के लिए गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। इन आयोजनों के माध्यम से उन्होंने लोगों में देशभक्ति, एकता और सामाजिक जागरूकता की भावना को मजबूत किया। वे केवल एक नेता ही नहीं बल्कि एक महान विचारक भी थे। उनका विश्वास था कि जब तक भारत के लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने युवाओं से हमेशा साहस, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का आह्वान किया। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका देश प्रेम आज भी हर भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों प्रिय, आज हमें लोकमान्य तिलक जी का जीवन यह सीख मिलता है कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए और समाज सेवा के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम उनके आदर्शों पर चले तो हम एक मजबूत, शिक्षित और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बातें कर रहे थे महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। दोस्तों इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

स्वावलंबी बनना प्रत्येक युवा का सपना होता है। युवावस्था की शुरुआत होते ही उसमें आत्मनिर्भर बनने की चाहत गहरी होती चली जाती है। आज के इस दौर में समाज तथा परिवार में स्वयं की सार्थकता व उपयोगिता साबित करना हर एक युवा का सपना है, मगर बढ़ती आबादी तथा सीमित सरकारी अवसरों ने युवाओं के इस सपने पर आंख तरेरे हुए है। हाल के वर्षों में गैर सरकारी तंत्र में रोजगार के अवसर तो बढ़े हैं, पर साथ ही कई अनुबंध एवं प्रतिबंध भी बढ़े हैं। इसी कारण आज के युवाओं को जरूरत है स्वरोजगार की दिशा में बढ़ने के लिए। हमें समझने की जरूरत है कि जब एक युवा स्वरोजगार स्थापित कर लेता है तो वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे समान सोच वाले युवाओं के लिए भी रोजगार उत्पन्न करता है तथा अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। भले ही भारत को आज विश्व का सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भारत के आर्थिक विकास के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। देश में बेकारी की समस्या में मूल कारणों पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि आर्थिक संपन्नता के लिए व्यवसाय एवं उद्योग के अतिरिक्त प्रायः लोग अन्य आर्थिक स्रोतों के रूप में नौकरी को ही विशेष महत्व देते हैं। यहाँ तक कि शिक्षित, अर्धशिक्षित व उच्च शिक्षित सभी वर्ग के लोग नौकरी और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फलस्वरूप नौकरी की समस्या हमारे लिए राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुकी है। यही कारणवश भारत के पास कौशल विकास, नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसमें भारत के युवा अपनी क्षमता का उपयोग कर न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे के लिए भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने में सक्षम। आज के युवाओं का लक्ष्य भारत के प्रत्येक नागरिक को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, प्रत्येक हाथ को काम प्रदान करना और भारत को एक समृद्ध देश बनाना होना चाहिए जहां देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक विकास का लाभ मिल सके। इंटरनेट के बढ़ने से आज नवयुवक ही नहीं बल्कि नवयुवतियाँ भी बढ़ चढ़ कर रोजगार की सीढ़ियों पर चढ़ स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। स्वरोजगार के बहुत से फायदे हो सकते हैं। स्वावलंबी लोग अक्सर उल्लेख करते हैं कि उन्हें अपने काम के कारण स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पूर्ति, सामाजिक सम्मान और अपने स्वयं के धन पर नियंत्रण का लाभ मिलता है। स्वरोजगार के यही फायदे हैं कि केंद्र सरकार ने अनेक नीतियाँ चलाई जिसके कारणवश लाखों युवाओं ने विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण लिया। स्वरोजगार के लिए युवाओं का अनेक श्रेणियों में कुशल होने की जरूरत को समझा और बड़े ही स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई तथा भिन्न भिन्न श्रेणियों में कुशल बनाया जिसके कारणवश वे आगे चलकर स्वावलंबी हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार छोटे उद्योगों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है और भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही है। आज के दौर में अगर आपके पास सोच तथा कुशलता है तो आप अनेक योजनाओं का फायदा उठा अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। आज न जाने कितने ही युवा समाज की परेशानियों को चिन्हित कर उनका समाधान खोज बहुत ही कुशल ढंग से स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर

0: आप अपने श्रेणी में कुशल हैं तो विभिन्न सरकारी योजनाओं की मदद से बड़ी ही आसानी से ऋण ले सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के स्टार्टअप युग में जिनके पास धन है वे बहुत से लघु उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे हैं। शायद यही कारण है कि साल 2021-22 में भारत नए स्टार्टअप शुरू करने के श्रेणी में विश्व भर में अपना लोहा मनवा रहा है। आए दिन हमें ऐसे नए नए स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं जिनके संस्थापक एक साधारण परिवार से आते थे, मगर नव विचार एवं स्वावलंबी बनने को खुद पे आत्मविश्वास के कारण आज सफलता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। स्वरोजगार के अवसर सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त हैं, जैसे कि मत्स्य पालन, मुर्गी फार्म, फल तथा सब्जी उत्पादन इत्यादि। असल में देखें तो सही तकनीक का इस्तेमाल करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अनेक प्रकार के स्वरोजगार संबंधी अवसर हैं। आज के इस कृत्रिम दौर में समाज फिर से प्रकृति के तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण दूध, गोबर, गौमूत्र, पत्तल की मांग कई गुना बढ़ी है। आपको जानकर यह बहुत हैरानी होगी कि बड़े शहरों में तथा इंटरनेट पर गोबर का कंडा, जिसे कि झारखंड की आम बोली में गोइठा भी बोलते हैं, वह दर्जन पर बिकता है। ऐसे कई उदाहरण से यह साफ होता है कि समाज में स्वरोजगार के अवसर तो बहुत हैं, बस उन अवसरों को समझकर उनको रोजगार में तब्दील करना ही असली चुनौती है। सरकार के अथक प्रयास तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना ही कारण है कि अब अपना संगठन या कंपनी पंजीकृत करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था स्वरोजगार, वार्ताकार थे ऋषभ कुमार शुक्ला। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम बातें करते हैं ट्रैफिक नियमों का करें पालन विषय पर। जी हाँ दोस्तों, सड़क सुरक्षा केवल सरकार या ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। प्रतिदिन समाचारों में सड़क दुर्घटना की खबरें सुनने मिलती हैं। इन दुर्घटनाओं में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और लाखों लोग घायल हो जाते हैं। दुख की बात तो यह है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं की होती है। अधिकांश दुर्घटना केवल इसलिए होती है क्योंकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। दोस्तों, ट्रैफिक नियम हमारी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि हमारे जीवन की शिक्षा और रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। जैसे विद्यालय में अनुशासन नियम होते हैं, वैसे ही सड़क पर सुरक्षित यात्रा करने के लिए ट्रैफिक नियम आवश्यक है। हमें हमेशा सड़क के बारे में ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए, लाल बत्ती पर रुकना चाहिए और हरी बत्ती पर आगे बढ़ना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट आवश्यक लगाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी जीवन भर का पछतावा कर सकती है। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि युवाओं के ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबसे ज़्यादा आवश्यक क्यों है? दोस्तों, आज का युवा देश का भविष्य है। युवाओं में ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास भरपूर होता है, लेकिन कई बार यही उत्साह लापरवाही में बदल जाती है। तेज़ गति से बाइक चलाना, स्टंट करना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, तीन लोग का एक ही बाइक पर बैठना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना और शराब पीकर वाहन चलाना जैसी गलत आदतें दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। दोस्तों, कुछ युवा यह सोचते हैं कि तेज़ गाड़ी चलाना बहादुरी या स्टाइल की निशानी है, जबकि वास्तव में यह अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना है। सच्चा साहस नियमों का पालन करने में है, न कि उन्हें तोड़ने में। दोस्तों, याद रखिए, यदि किसी परिवार का एक युवा सदस्य सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे एक केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का भविष्य प्रभावित होता है। माता पिता के सपने टूट जाते हैं और समाज में भी एक योग्य नागरिक खो देता है। इससे प्रत्येक युवा को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करे, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करे, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाइए, नशे की हालत में कभी भी वाहन न चलाइए, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए ड्राइविंग नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, सड़क पर थोड़ी सी सावधानी जीवन भर की सुरक्षा बन सकती है। यदि हम सभी ट्रैफिक नियमों का ईमानदारी से पालन करें तो सड़क दुर्घटना में बहुत बड़ी कमी आ सकती है और हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे ट्रैफिक नियमों का पालन करने विषय पर। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा

दोस्तों इसी गाने के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें आपकी दोस्त आराध्या माही को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के 10,000 स्थानों पर युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। माय भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने बताया कि रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को 14 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। गिरिडीह के नक्षत्र वन में आज नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार ने पौधा लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पचम्बा से सटे कल्याणडीह में बनने वाला 28 एकड़ का रॉक गार्डन मॉर्निंग वॉक और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित घोटालों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की धनबाद जिला इकाई ने आज मेमको मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन धनबाद के उपायुक्त को सौंपा। रांची नगर निगम में आज महापौर रोशनी खलको की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित सखवा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उप महापौर नीरज कुमार और सभी वार्डो के पार्षद शामिल हुए। महापौर ने बताया कि महोत्सव के तहत सखुआ के साथ महुआ, पलाश, कुसुम, डाहू सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। युवा व्यवसायी शुभम साहू की हत्या के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आज लोहरदगा में बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान जिले के प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद रहीं और बस, ट्रक सहित अधिकांश व्यवसायिक वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा, जबकि रेल सेवा सामान्य रही। सरायकेला खरसावा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा अपराधी फरार हो गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम

0: गच लगाओ गच बचाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: संध्या बहन बटले
1: जोहार। ई कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कहो का हाल चाल है?
4: हमर हाल चाल तो एकदम नगद है भाई, अपन दने बताओ।
3: हमरो हाल चाल ठीक है और आसरा करी ले कि हमर किसान भाई बहन मन भी जे सुनत हो से मन कर भी हाल चाल बढ़िया होगी। और देखो एखन बरसात कर मौसम है और भरखर खेती बाड़ी कर बेरा है, अपन और अपन परिवार के बेस तरी राखे बेरा भी है। काल के जीव जहान बेस रही तभे तो किसान भाई बहन मन बेस तरी काम काज करे पारबे।
4: सही कहत ही भाई, खेती तो हमर ठेना सालो भर करल जाय है नहीं। बेस उपज भेटाई इकर लगिन खेत कर ध्यान हो राखे पड़ी, खेत कर माटी कर जांच हो बेरा बेरा से करवाए चाहिए, जेकर से ई पता चली कि हमरे कर खेत कर माटी में कोनो कमी तो नखे।
3: हाँ सही बात के कहली बहिन, काल के माटी जांच करवाए बहुत जरूरी है। एगो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जेकर माध्यम से माटी कर गुण और उकर पोषक तत्व कर पता चलेला। और कोनो कोनो बेरा ऐसन भी होवेला कि बागरा मात्रा में रासायनिक खाद कर प्रयोग कर ले माटी कर उर्वरा शक्ति जेके कहे ना है ने उ खत्म हो जाएला और माटी जहाँ से पता चलेला कि खेत में कौन कौन पोषक तत्व मन कर जरूरत है तो वहे आधार से किसान भाई बहन मन उचित मात्रा में उर्वरक कर प्रयोग कर सके ना का।
4: सही कहा थी, संतुलित मात्रा में उर्वरक कर प्रयोग करे से फसल बेस बढ़ेला और उत्पादन बगरा होवेला, संगे है किसान भाई बहन मन कर खर्चा कम होवेला, माटी कर उर्वरता लंबा समय तक बनल रहेला, पर्यावरण उपरे पड़े वाला दुष्प्रभाव हो कम होवेला। माटी जांच से माटी कर प्रकार और उकर क्षमता पता चलेला, इकर आधार में किसान भाई बहन फैसला कर सके ना कि उनकर खेत लगिन कौन फसल बेस होगी।
3: और देखो संध्या बहन, सरकार बटले भी किसान भाई बहन मन के माटी कर गुणवत्ता कर जानकारी देवे के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कर भी शुरुआत करल गेलक है और इकर अंतर्गत उमन के को कार्ड मिलेला करवाए खातिर और कार्ड में माटी कर स्थिति और जरूरी उर्वरक कर जानकारी देवल जाएला। ई योजना किसान मन के वैज्ञानिक खेती लगिन प्रेरित करेला।
4: हाँ भाई, तो किसान भाई बहन मन इकर लाभ उठावे और देखो गोइठ बात हमरे करते रहब, अब कार्यक्रम के हो आगे बढ़ेला।
3: तो देखो ई कार्यक्रम में हमरे का जानकारी करब से के बताए देवत थे। सबसे पहले हमरे आज की बात से कार्यक्रम कर और करब। आज की बात में आज हमरे जानब धान रोपाई कर उचित विधि और उकर देखभाल कैसे करल जाय से कर बारे में विशेषज्ञ होवे डॉक्टर परवेज आलम। और कृषि विकास गीत सुनब कुरमाली भाषा में, कलाकार हुए अजीत कुमार महतो और संगीमान। और नई उम्र की नई फसल में एगो किसान पन्नु उराव से रवरिन के भेंट भी करवाओ।
4: हाँ तो भाई जानकारी कर संग और करीला, हमरे जानब धान रोपाई कर उचित विधि और उकर देखभाल का तरी करे खोई, इकर बारे बतात है डॉक्टर परवेज आलम और इनकर से बतियाए है कृष्ण जीवन भाई।
3: किसान साथियों, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और अच्छी उपज के लिए सही समय पर रोपाई, उचित दूरी, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा समय समय पर फसल की देखभाल बहुत आवश्यक है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परवेज आलम, एसोसिएट प्रोफेसर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है।
5: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि धान की रोपाई के लिए सबसे अच्छी प्रभेद कौन कौन सी होती है?
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अगर किसान भाई धान की खेती करना चाह रहे हैं और उनके पास जो जमीन है, जो संसाधन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी धान का प्रभेद वो लगा लेंगे और उनको उचित मुनाफा मिल जाएगा। तो धान का प्रभेद जो है वो चुनाव करें अपने जमीन के हिसाब से, यानी पानी की उपलब्धता के हिसाब से, तो सबसे पहले तो हम जहाँ पर मान लीजिए पानी कम है किसान के पास, तो वहाँ पे हम किसान भाई को सलाह देते हैं कि आप यहाँ पे कम ड्यूरेशन का धान का प्रभेद, ये जो कम दिन में पक के तैयार हो, जैसे सहभागी धान है ना
3: जी,
5: नवीन है, या बिरसा का जो धान का जो सीरीज है वो सब आप लगा सकते हैं। खास करके सहभागी और नवीन जो है ये बहुत अच्छा कर रहा है हमारे झारखंड में, ठीक है
3: जी,
5: और ये 100 से 120 दिन में पक के तैयार भी हो जाता है। दूसरा, सहभागी धान का एक खासियत ये भी है कि ये थोड़ा बहुत जो सूखा अवरोधी किस्म वैरायटी है, प्रभेद है, तो अगर सूखा भी थोड़ा आता है तो इसको ये झेल लेता है, यानी किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं मध्यम ड्यूरेशन का है ना, जो 120 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाता है। ये उन किसानों के लिए अच्छा है जिनके पास पानी का स्रोत बहुत दिन तक उपलब्ध है
3: जी,
5: यानी जब चाहें तो वो खेत में पानी दे सकते हैं। और इसके लिए हम लोग दो तीन वैरायटी, जैसे स्वर्णा है, MTU 1010 है, एक सबसे पुरानी वैरायटी बहुत दिन से चली आ रही है IR 64 को भी लोग लगाते हैं, एंड राजेंद्रा महसूरी को भी हम लोग लगा सकते हैं झारखंड में। और अंतिम में वैसा जमीन जो सबसे निचला जमीन जो होता है जहाँ पे पानी कभी सूखता ही नहीं है, है ना, तो उस जगह पे हम लोग कहते हैं किसान भाई को कि आप यहाँ पर सबसे लंबी दूरी की दिन में पकने वाली वैरायटी को यहाँ पे डालिए। उसमें सबसे प्रथम नाम है Swarna Sabwan का, जो कि फ्लड टॉलरेंस है, मतलब बाढ़ से उसको नुकसान नहीं होता है, है ना, और CR धान भी जो है यहाँ पर अच्छा करता है। तो इस तरह से हम आपको बताएं कि किसान के पास देख लें किस तरह की जमीन है ना, उस हिसाब से प्रभेदों का चुनाव करें।
3: अभी तो आपने प्रभेदों के बारे में बताया, अब आगे हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि धान रोपाई के लिए बीज दर क्या होनी चाहिए।
5: देखिए, धान को हम लोग ऐसे तो बहुत तरह से लगाते हैं
3: जी,
5: लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख है, जो झारखंड में हमारे किसान भाई अक्सर उसको यूज़ करते हैं, वो है कि रोपा विधि। तो रोपा विधि में हम लोग कहते हैं कि 25 से 30 केजी जो है धान का बिचड़ा जो है वो एक हेक्टेयर के लिए
3: जी
5: उपयुक्त है। दूसरा, एक और भी आया है कि अभी हम लोग नया टेक्नोलॉजी जो झारखंड में किसान भाई को प्रमोट कर रहे हैं, किसान भाई को बार बार कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट सीधे राइस लगाइए, है ना, यानी जैसे पहले आप बिचड़ा उगाते हैं, बिचड़ा जब 20-25 दिन का हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको ले जा करके खेत में रोपते हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट सीड को ही लगा दीजिए, है ना। तो अगर डायरेक्ट सीडेड किसान भाई खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा लगता है, 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर लगता है। लेकिन कुछ किसान भाई हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैं जो जागरूक हैं, वो हाइब्रिड धान का भी खेती करते हैं, है ना, तो हाइब्रिड धान की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर 12 से 15 किलो जो सीड होता है वो एक हेक्टेयर के लिए अच्छा माना जाता है
3: जी। अब आती है बीज उपचार की बात, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बीज उपचार कितना लाभदायक है।
5: देखिए, बीज उपचार बहुत ही लाभदायक है, और हम आपके माध्यम से किसान भाई को ये बार बार अनुरोध करते आते हैं, और आज फिर अनुरोध कर रहे हैं कि देखिए बीजोपचार जरूर करिए
3: जी,
5: क्योंकि देखिए बीजोपचार करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि आप अपने पौधे को स्वास्थ्य की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक बीजोपचार किया हुआ पौधा जो है उसको हेल्दी मानते हैं, स्वस्थ मानते हैं, और जब आप स्वस्थ पौधे को जब खेत में लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका फसल भी स्वस्थ होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सही ढंग से बीजोपचार किया है तो आप देखेंगे कि आपके खेतों में जो बीमारी का जो अटैक होता है, जब पौधे बड़े हो जाते हैं, जो बीमारियां लगती हैं या कीट लगते हैं, इन सब का प्रकोप कम हो जाता है, है ना
3: जी।
5: तो इसलिए बीजोपचार को जरूर करना चाहिए।
3: आपने तो अभी बताया बीज उपचार कितना लाभदायक है इसके बारे में
5: जी,
3: अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बीज उपचार कैसे करना,
5: कैसे करें। हाँ, इसके बारे में बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक मैं दवा का नाम बताना चाह रहा हूँ
3: जी,
5: जिसका नाम है कार्बेंडाजिम।
3: कार्बेंडाजिम
5: जी
3: जी।
5: तो कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम लोग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि किसान के पास या कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कार्बेंडाजिम उपलब्ध नहीं है, तो उस हालत में आप ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति केजी सीड, और इसको सीड ट्रीटमेंट करने का तरीका ये है कि उसको पहले 24 घंटा पानी में अच्छी तरह से भिंगा लें
3: जी।
5: सीड ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसको अगले 24 घंटा तक छांव में सुखा लें
3: जी।
5: जब ये सूख जाए तभी जा करके इसको खेत।
3: अब रोपा करने के लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें?
5: देखिए, रोपा करने के लिए तो जो हमारी पुरानी विधि चली आ रही है कि खेत में पानी का जमाव होना चाहिए
3: जी,
5: है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पहले तो आप अपनी खेतों का जो मेड़ बंदी है उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बारिश के टाइम में जो भी पानी मिले आपको वो आपके खेत से निकल के दूसरे के खेत में ना जाए
3: जी,
5: है ना
3: जी।
5: तो जब इस तरह से, कहने का मतलब है कि आपने खेत में पानी का संचय करना है, आपको पानी रोक के रखना है। और जब पानी रुक जाए खेत में तब उसमें 2 से 3 बार प्लाइंग कीजिए ताकि वो पडलिंग हो जाए। पडलिंग का मतलब कीचड़ बन जाए,
3: कीचड़ बन जाए,
5: है ना, अच्छा तरह ढंग से कीचड़ बन जाए। 2 से 3 बार करना है, एक बार करेंगे तो पूरा ढेला नहीं टूटेगा, है ना, 2 से 3 बार करना है। और उसमें कोशिश करिए कि 5 से 7 सेंटीमीटर यानी 1 उंगली के बराबर पानी जो है वहाँ पर जमा रहे। जब आप पडलिंग कर रहे हैं यानी जब आप उसको मड़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप एक कोशिश करिए कि 10 टन गोबर की खाद अगर मिल जाए तो उसको जरूर डालिए
3: जी।
5: ये डालने से क्या होता है, मिट्टी की संरचना सही होती है और जो आप सीडलिंग वहाँ पे लगाते हैं, रोपा करते हैं, वो जन्मता बहुत अच्छा है ना। तो इसलिए जरूर आप उसमें 5 से 10 टन FIM गोबर की खाद आप वहाँ पे डाल दें
3: जी। तो ये भी बता दें कि धान की रोपाई हमारे किसान भाई कैसे करें, उसकी उचित दूरी क्या हो और खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
5: जी सही बताया। देखिए, अगर रोपा करने जा रहे हैं तो उसका सही समय जो है वो जुलाई के अंत तक ख़त्म कर देना चाहिए। अब है कि आपने पूछा कि दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो देखिए, अगर नॉर्मल वैरायटी आप लगा रहे हैं, जो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, रोपा कर रहे हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस लगा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर रो से रो ने पंक्तियों से पंक्ति की दूरी आप 20 सेंटीमीटर, हाँ जी। लेकिन वही धान अगर आप श्री विधि से लगा रहे हैं तो वहाँ पर 25 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर का दूरी मेंटेन करें, यानी पंक्ति से पंक्ति, प्लांट से प्लांट। अगर आप श्री विधि से लगा रहे हैं तो 1 सीडलिंग पर हिल डालिए, मतलब एक जगह जहाँ खोसेंगे सीडलिंग वो एक ही होगा। लेकिन अगर रोपा कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 सीडलिंग एक जगह पे आपको डालना है। तो ये तो हो गया स्पेसिंग और कितना सीडलिंग डालना है उसके बारे में। दूसरा प्रश्न किया आपने कि उर्वरक के बारे में
3: जी,
5: है ना। तो देखिए, उर्वरक नाइट्रोजन आपको करीब करीब 100 kg के आसपास 1 हेक्टेयर में डालना है। फॉस्फोरस करीब करीब 60, पोटासियम जो है ये भी 60 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से डालना है
3: जी।
5: अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें जिंक की कमी हो रही है तो 25 kg पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट का भी आप उपयोग करें जहाँ पर जिंक का कमी है।
3: किसान भाइयों, आज आपने जाना कि धान की रोपाई वैज्ञानिक तरीके से करने और समय समय पर फसल की उचित देखभाल करने से उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परवेज आलम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को धान की रोपाई और इसकी देखभाल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
5: नमस्कार, धन्यवाद।
3: तो ये बड़ा बढ़िया जानकारी होलक कि धान का रोपाई कर उचित देखभाल और ओकर प्रबंधन कैसे करवाए से कर बारे में बड़ा अच्छा बता लें परवेज आलम जी। अब आओ एगो कृषि विकास गीत सुन लो थे।
4: हाँ भाई, काले की जानकारी कर संगे संगे हमरे के रिझ रंग भी हाँ, जरूरी हाँ, है नहीं?
3: तो आओ तनी मन के रिझाइल और यह कुरमाली में अजीत कुमार महतोर संगी मनकर गावल ये कृषि।

0: तो कृष्ण जीवन भाई बड़ा नगद गीत सुनवा ले रो रे। अब चलो नई उम्र की नई फसल में हमरे मन एगो किसान भाई से गोठियाल गोइठ के सुनीला।
1: और किसान है पनु उराव और इनकर से बतिया है संजीव कुमार।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों खेती के साथ साथ यदि हम अन्य कार्य करते हैं जैसे मुर्गी पालन पशुपालन इत्यादि कार्य करते हैं तो हमें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। यदि किसान साथी इस पर अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं तो बढ़िया मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, नई तकनीक को अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा ही कृषक साथी हैं जो बड़े पैमाने पर मुर्गी पालते हैं अंडे के लिए या फिर मटन के लिए और अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने इस क्षेत्र में। वह हैं कांके बुकरू ग्राम चामा के श्री पर्णु राव जी। पर्णु जी स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: पर्णु जी ये कार्य आप मुर्गी पालन बड़े तौर पर आप कर रहे हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र में आपने ये व्यवसाय शुरू किया हुआ है, तो क्या मन में आया कि आपने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया?
3: देखिए आजकल के डेट में है सो धीरे धीरे है सो कृषि कार्य के तहत है सो खेती जो है जमीन धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है या फिर कहें को कम होता जा रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा रुझान कृषि के साथ साथ पशुपालन की ओर गया। तो शुरुआत में हम ऐसे सुकर का पालन करते थे लेकिन सुकर पालन छोड़ के अभी हम कुछ हद तक बकरी रखे हुए हैं और ज़्यादातर ऐसे हमारे यहाँ अंडा उत्पादन के तौर पर और मीट पर्पस पर मुर्गी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें आपको लेयर मुर्गी जो अंडा उत्पादन के तौर पे है वो सोनाली प्रभेद का है और देसी नस्ल की है और कुछ हद तक ऐसे ब्रॉयलर का भी हम चूजा हमारे यहाँ से उत्पादन होता है
2: जी। तो खास तौर पर आप अंडे के लिए ही कार्य कर रहे हैं?
3: ज़्यादातर हम लोग अंडा बेसिस पर ही काम करते हैं
2: जी। तो कितना आपने मुर्गी पाल रखा है?
3: लगभग किसानों को हम लोग सब पालने के बेसिस पर दिए हुए हैं, तो किसान का अपना मेहनत होता है बाकी बात पूंजी हम लोग का होता है, तो इस तरह का हम लोग का लगभग है सो लगभग 10-15 हज़ार के आसपास है सो मुर्गी उपलब्ध है आज के डेट में।
2: और कितना अंडा का उत्पादन आप ले लेते हैं?
3: इसमें लगभग ऐसा 60% अंडा का उत्पादन हो जाता है।
2: अच्छा,
3: 60-65% उत्पादन हो जाता है।
2: यदि गिनती की बात करें तो कितना सैकड़ों में हो जाता है?
3: अभी हम लोग का लगभग 8-10 हज़ार
2: प्रतिदिन।
3: हाँ, प्रतिदिन के बाद बता रहे हैं।
2: और पंडू राव जी अंडा से भी आप चूजा पैदा करते हैं
3: जी,
2: तो किस तरह करते हैं? परंपरागत रूप से तो है कि जो मुर्गी है वो अंडे को सेती है, उसमें वक्त लगता है
3: जी जी,
2: लेकिन वैज्ञानिक तरीके से कैसे आप अंडे से चूजे को पैदा करते
3: हैं? चूंकि हमारे पास मिस्त्री वगैरह भी है जो हैचरी मशीन का उत्पादन बनाते हैं, ऑर्डर पर बनाते हैं और खुद का भी मशीन है, तो अभी हमारे यहाँ से चूजा का उत्पादन लगभग प्रत्येक सप्ताह 2-3 लाख चूजा का उत्पादन पड़ता है। अब ये चूजा का उत्पादन जैसे ऑर्डर आता है उसी ऑर्डर के आधार पर हम लोग फिर सेल के लिए देते हैं, वो आउट ऑफ स्टेट भी जाता है और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी है सो आपका सेल के लिए चला जाता है।
2: अच्छा, ये मशीन का निर्माण भी आप खुद करते हैं?
3: हाँ, मशीन का निर्माण हमारे पास मिस्त्री उपलब्ध हैं। हाँ, तो जो किसान हमारे यहाँ मशीन लेना चाहता है, कितना कैपेसिटी के चाहिए उसको मशीन 250 से लेकर आपका है सो 10-20 हज़ार अंडा उत्पादन का कैपेसिटी का मशीन उपलब्ध है हमारे पास।
2: तो कैसे इसमें आप तैयार करते हैं इस चूजे को?
3: तो इस चूजे को जैसे कि गांव देहात में क्या होता है कि मुर्गी है सो सिकाई करती है, 21 दिन के बाद है सो चूजा है सो बाहर आता है अंडे की सिकाई करने के बाद, तो इसी तरह हम लोग है सो मशीन से जब सिकाई करते हैं तो मशीन से सिकाई करने से ये हम लोग को फ़ायदा होता है कि अंडा जो देने की क्षमता होता है मुर्गियों में बढ़ जाता है पहला। दूसरा फायदा होता है कि आपको है सो अंडा जो ज़्यादा मात्रा में हम लोग को चूजा प्राप्त होता है, क्योंकि अंडा जो सिकती है मुर्गी वो है सो टेम्परेचर कम या बेसी कभी होते रहता है, जिसकी वजह से पूरे अंडों से चूजा को है सो सृजन नहीं हो पाता है। लेकिन मशीन से अगर सिकाई करते हैं तो इसमें है सो करीब आपको 96-98% तक है सो अंडा से चूजा का उत्पादन हो जाता है आज के डेट में।
2: कितने समय में?
3: ये बस सेम टाइम लगता है।
2: अच्छा।
3: आपका जो नेचुरल केसेस है 21 दिन में चूजा का उत्पादन होता है, सेम केस यहाँ भी आता है। हम लोग 18-20 दिन तक है सो अंडा को मशीन में रखते हैं, उसके बाद 2 दिन पहले है सो अंडा को निकाल देते हैं मशीन में रखते हैं, उसी के बाद है सो अंडा से चूजा अपने आप स्वतः बाहर आ जाता है
2: जी। तो आप अंडे को भी मार्केट में सप्लाई करते हैं और
3: जी,
2: साथ
3: जी,
2: साथ
3: जी।
2: चूजा की भी बिक्री
3: बिल्कुल
2: करते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अंडा का जैसे कहीं से ऑर्डर आता है तो हमारे जो क्षमता है मशीन का वो क्षमता में अपने रखते हैं, उसके बाद जो शेष बच जाता है तो उसको हम लोग बाहर ऑर्डर पर ऐसे सप्लाई करते हैं, बिक्री कर देते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद परनू उराव जी आज आप इस कार्यक्रम में, और मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है इस पर आपने बातचीत की। परनू उराव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: और कृष्ण जीवन भाई, देखो इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला।
7: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
6: और प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची कर।
7: अब रावण कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
6: संध्या बहन के विदा देव
7: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं की। भारत कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, विरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची, झारखंड से प्राप्त। किसान भाई, मौसम नम एवं अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा। लगातार वर्षा के कारण तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना बनी रहेगी। भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कना, तेज हवा के झोंके आदि, जमीन के पास तेज हवाएं चलने की संभावना है। तेज हवाओं से फसलों और खेती के सामान को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि भारी बारिश से जल जमाव हो सकता है। उमस भरे मौसम में कीट और बीमारियों के पनपने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में किसान भाई, बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना को देखते हुए किसान भाई मध्यम खेत में आगामी दिनों में होने वाले वर्षा जल के साथ साथ ऊपरी खेतों से पानी का बहाव रोपा वाले खेतों में कर पानी जमा कर रोपा करें। जिस किसान के पास ऊपरी खेत अभी भी प्रति रह गया है, वे कुलथी, उड़द, मूंग या विभिन्न सब्जियों की खेती के लिए तैयारी करें। किसानों को आगामी 5 दिनों में सिंचाई, अंतर कृषि संचालन और खड़ी फसलों में पौध संरक्षण उपायों और उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। काटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। भारी बारिश से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों को पॉलीथीन से ढक दें। बारिश और बादल की स्थिति में खड़ी फसलों में रोग का प्रकोप

फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए जाल फसल के रूप में अफ्रीकी गेंदा का उपयोग उपयोगी है। मड़ुआ की फसल, जिसे हम लोग रागी के नाम से भी जानते हैं, बीस से पच्चीस दिन अगर पुरानी है तो उसमें निकाई गुड़ाई

का भुरकाव करें। जल्दी बोई गई जो मक्के की फसल है, अगर वो 4 सप्ताह की अवस्था में है तो फसल में निकाई गुड़ाई करें तथा 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से डालें और मिट्टी चढ़ा दें। लंबे समय तक बादल छाए रहने तथा वर्षा के कारण मक्के के जीवाणु डंठल सड़न रोग के संक्रमण की संभावना बनी रहती है, विशेषकर अंकुरण से वानस्पतिक अवस्था तक। डंठल की सड़न को नियंत्रित करने के लिए सूखे दिनों में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 30 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ को 2 बार में डालने, जिससे कि इस रोग की गंभीरता कम हो जाती है। किसान भाई, वर्षा की कमी को देखते हुए धान की फसल में छटाई करें ताकि पानी और पोषक तत्वों के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा कम की जा सके। छटाई की गई पौधों को पशुओं को खिलाएं। सीधे बोए गए धान की फसल अभी 3 से 4 हफ्ते की अवस्था में होगी। आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, इसलिए किसान भाई ब्यूसानिंग के लिए जाएं। ब्यूसानिंग के समय 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालें और उसके बाद खरपतवार निकालना और खाली जगहों पर पौध लगाना, जो गैप मैपिंग है, वैसे काम कर लें। खाद डालते समय अतिरिक्त पानी निकाल दें और 1 दिन बाद खेत में पानी भर दें। समय पर बोई गई फसल वानस्पतिक अवस्था में है। अभी हम अरहर चना की बात कर रहे हैं। ढलान की तरफ नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी निकालने का इंतजाम करें। जो किसान भाई अभी भी बुआई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ज्वार, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, उर्दबीन, मूंग और भिंडी के साथ अंतर फसल अपनाने का सुझाव दिया जाता है। अंतर फसल के मामले में अरहर के साथ ज्वार, अरहर के साथ मक्का, अरहर के साथ मूंगफली

और अरहर के साथ भिंडी की खेती आप कर सकते हैं। अगर हम बागवानी की बात करें किसान भाई, तो करेले की फसल में फल मक्खी के प्रकोप देखे जा रहे हैं, जिससे करेले के फल पीले दिखने लगते हैं तथा फल जल्दी नरम हो जाते हैं। इसके बचाव हेतु किसान भाई अपने खेतों में 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। आम के पौधे लगाने का यह सही समय है। ग्राफ्ट किए गए आम के पौधों को 10x10 मीटर की दूरी पर और बीज से उगाए गए पौधों को 12x12 मीटर की दूरी पर लगाएं। आम के सघन बाग, जिसे हम लोग हाई डेंसिटी बोलते हैं, के लिए 5x5 मीटर की दूरी पर रखें, जबकि आम्रपाली आम के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर्याप्त है। फल देने वाले हर पेड़ में हर साल एक किलो नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटास और 80 से 100 किलो अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। तो ये तो हुई बात मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं की, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची झारखंड से प्राप्त। आइए अब हम सुनते हैं भेंट वार्ता।

0: कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में हम आज बातें करेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की। जी हाँ किसान भाइयों, इसके तहत हमारे बहुत ऐसे किसान भाई हैं जो मनरेगा का लाभ लेकर के खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हम हैं पलामू जिला के पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाडी गांव में, और जहां हमारे साथ हैं आज जंग बहादुर मेहता, एक सफल किसान। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जंग बहादुर जी, आपने मनरेगा के तहत कौन कौन सा लाभ लिया?
1: मनरेगा के तहत हम लोग ने सबसे पहले तालाब लिए, तालाब से मत्स्य विभाग से मछली हम लोग पाले, अब अभी हमारे पास भी है मछली, बहुत अच्छा इनकम मिला। मनरेगा ही ऐसा मिला कि हमको तालाब खना गया।
0: मनरेगा के तहत यहाँ डोभा का या तालाब का?
1: हाँ, डोभा
0: डोभा का निर्माण।
1: हाँ, डोभा।
0: कितने डोभा?
1: डोभा हम

0: दो खनवाए थे
1: अच्छा
0: ना, दो खनवाए थे,
1: कितना कितना का
0: आपको 60x60 के था,
1: अच्छा दो डोबा था,
0: दो डोबा था, तो उसमें मछली पाले, एक में तो बहुत पानी कम रहा लेकिन वो पानी अच्छा मिला तो उसमें हम खुद मछली डाले हुए हैं, इससे बहुत अच्छा हमको लगा कि मनरेगा योजना बहुत अच्छा है।
1: मतलब शुरुआत मछली पालन की वहीं से हुई?
0: हाँ, शुरुआत
1: पहले डोभा निर्माण और उसके बाद फिर उसमें आपका मछली पालन।
0: हाँ, मछली पालन।
1: कौन कौन सी मछलियाँ पाले हुए?
0: मछलियाँ हम लोग पहले ही डाले थे बांगुर, जिसको लोग बल्या बोलते हैं, कम जगह के चलते हम लोग प्रशिक्षण में गए थे तो कम जहाँ होगा वहाँ पर बल्या पालना चाहिए,
1: प्रशिक्षण में बताया गया।
0: हाँ, अच्छा। इसीलिए जब भी हम लोग डालते हैं तो बल्या डालते हैं, बल्या कम भी जगह में उत्पादन हो जाता है।
1: ऐसा मतलब कि इसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा दामों पर होती है?
0: हाँ, बिक्री भी बहुत अच्छा अच्छा है, और मछली वैसा मछली है कि हाली जल्दा मरता भी नहीं है। हाँ, पानी अगर कम भी पड़ गया तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए चॉइस करके हम लोग।
1: अभी तालाबों में कौन कौन सी मछलियाँ हैं?
0: अभी बल्या है हमारे पास है।
1: अच्छा,
0: इतना बहुत से कड़ा धूप किया लेकिन अभी भी हमारा कुछ दिक्कत नहीं हुआ,
1: अभी भी उसके पालन पोषण अच्छी तरह से हो रही
0: है। हाँ, अच्छी तरह से हो रही है।
1: पानी तो कम गया होगा तालाब में?
0: हाँ, पानी कम हुआ लेकिन बगल में हमारा व्यवस्था है, लोग मोटर चला के अपना
1: वो उसमें डाल देते
0: हैं। उसमें डाल देते हैं।
1: और गाँव का भी वैसा स्रोत बनाया गया होगा जिससे नाली वगैरह का पानी भी डोभा?
0: हाँ, बगल से पानी डोभा में चला जाता है, बरसात में जाता है लेकिन धूप का दिन में वो जो बगल में बोरिंग अपना है, बोरिंग से पानी डाल देते हैं,
1: उसी से जो लाभ हो जाता है।
0: हाँ, चार से पाँच।
1: ये तो हुई बात मनरेगा से डोभा की, और इसके अतिरिक्त?
0: इसके अतिरिक्त मनरेगा से फिर गैस सेट मिला।
1: अच्छा,
0: गैस सेट से भी
1: कब लिए गैस सेट?
0: हमको 18 में मिला हुआ था,
1: 2018।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: 2018 बहुत अच्छा रहा, गैस सेट बनाए, अपना दो गाय अपने पास रखे हैं।
1: अच्छा, जो दुधारू है?
0: दुधारू गाय है, जो अच्छा रहने सहने का व्यवस्था रहा। आज के डेट में व्यवस्था है,
1: तभी कितना बड़ा शेड है?
0: आपको 12.5x25 का है।
1: अच्छा, तो जाहिर सी बात है आपको गर्मी के मौसम में काफी सुविधा हो जाती है।
0: हाँ, गर्मी के मौसम
1: या फिर जाड़े के मौसम में?
0: हाँ, जाड़े हर चीज सब भी मौसम में सुविधा है। बरसात के मौसम में मतलब कि ज्यादा कीचड़ हो जाता है तो उस पर बांधेंगे तो मतलब कीचड़ नहीं होगा,
1: नहीं रहेगा।
0: खाना की व्यवस्था उसी में बनाया हुआ है,
1: नाद वगैरह सब उसी?
0: हाँ, सब उसी में है,
1: शेड में ही।
0: हाँ, शेड में ही अंदर
1: ये तो बहुत सुंदर हो गया। ये तो हुआ शेड निर्माण।
0: हाँ,
1: पशुपालन का कार्य भी फल फूल रहा है। अब हम बातें करेंगे और कार्यक्रम की।
0: और कार्यक्रम में मनरेगा के तहत मेड़बंदी भी चलाया गया था।
1: हाँ,
0: अगले साल बहुत अच्छा चला और बहुत अच्छा किसान।
1: तो आपने अपने खेतों का मेड़बंदी करवाया?
0: हाँ, अपना खेत में बहुत मेड़बंदी कराया, उससे फायदा हुआ कि पानी जो बह जाता था बरसात में।
1: हाँ,
0: उसका रुकावट रहा।
1: हाँ, ये मनरेगा के तहत मेड़बंदी का कार्य बहुत बृहद पैमाने पर करवाया गया गाँव में।
0: हाँ,
1: कि ताकि जो बरसात का जल है वो संरक्षित हो सके, जल स्रोत बन सके बढ़िया से।
0: हाँ,
1: ये कार्य करवाया गया, मेड़बंदी का भी कार्य का आपने फायदा लिया?
0: हाँ, हाँ, बहुत अच्छा रहा उसका भी।
1: हाँ,
0: किसान के हक में मेड़बंदी का जो भी है वो बहुत अच्छा रहा, इलाके हर खेत में मेड़बंदी होना।
1: और यहाँ तो और भी बहुत सारे किसान भाई करवाएंगे?
0: हाँ, पूरे किसान, हमको लगता है कि कम से कम 60% किसान लोग
1: मेड़बंदी का काम।
0: हाँ, मेड़बंदी में शामिल हुए हैं, पूरे अपना खेत में करवाए हैं। और जो भी छूटा हुआ है, अभी मुखिया जी बोले हैं कि जो छूटा है उसमें हम खुद करवा देंगे। हाँ, अभी
1: और क्या चल रहा है अभी खेतीबाड़ी?
0: खेतीबाड़ी में अभी मान ली कि वही हम लोग भिंडी बुने हैं
1: ना। यहाँ सब्जियाँ बृहद में पैमाने पे उगाई जाती
0: है? हाँ, सब्जियाँ हम लोग भिंडी बुने हैं, बगल में अभी मार्केट हम लोग यहाँ पर लगाए हैं आपको बरवाड़ी चौके पे।
1: हाँ,
0: हम लोग अपने किसान के लिए लगाए हैं पर्सनल।
1: अच्छा, उसमें क्या है?
0: हाँ, उसमें हर चीज जैसे मेल जिस जो भी सौदा निकला, जो भी फल निकला आपको साग सब्जी, मार्केट हम लोग का था दूर, दूर के चलते नजदीक हम लोग सब जगह इकट्ठा होकर के बरवाड़ी चौक पर ही लगा है, लेकिन सब्जी बेचने में सुविधा हो। हर सब्जी अभी मान लें कि अपने पास करेला लगा है, भिंडी लगाए हैं, ये सब दो तीन।
1: तो यहाँ गांव गिराव के लोग खरीदने आ जाते हैं?
0: हाँ, गांव गिराव के बहुत अच्छा, रोड से जो मेन रोड अपना है चलते वक्त बहुत अच्छा बिक्री भी है इसका।
1: ऐसे पहले कहाँ जाना पड़ता था?
0: हम लोग डालते ही जाते थे,
1: तो दूर पड़ जाता था,
0: बहुत दूरी जाता पड़ता था। इसी में इकट्ठा होकर ग्रामीण हम लोग जमा होकर के जगह लगा है।
1: तो अब जब सब लोग देख लिए कि यहाँ पे बाजार लग रहा है तो सब यहीं आ जाते हैं?
0: हाँ, सब लोकल जितना है सब कोई लोग आ जाते हैं। और रोड वाला भी जाते हैं गाड़ी घोड़ा से सब अपना।
1: और अगर हम धान की बात करें तो अभी क्या तैयारी चल रही है धान में?
0: धान की तैयारी अभी किसान का तो मेन कही याद रहा जो मौसम खराब हुआ
1: इसके धूप ज्यादा कर दिया।
0: हाँ, तो जिसका जिसका व्यवस्था था वो अपना मोटर से सभी बीजड़ा तैयार

0: डाल दिए, जो 15 या 20 दिन में पिंजरा तैयार हो जाएगा। और जिसका व्यवस्था नहीं है वो अभी इंतजार में है कि कब बारिश हो तो पिंजरा डालें।
1: यहाँ पर पानी के लिए ऐसे सिंचाई व्यवस्था क्या है?
0: सिंचाई व्यवस्था लाइन है, लाइन भी वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब 24 घंटे में हमको लगता है कि 20 घंटा का स्कूल लाइन।
1: तो बस वही से बोरिंग वगैरह हमारे किसान भाई लोग की
0: है? हाँ, बोरिंग हर खेत में, हर किसान का बोरिंग है।
1: आपने भी करवा रखा?
0: हाँ, हम लोग भी दो दो तीन तीन बोरिंग करवा के रखे हैं, जरूरत के अनुसार जहाँ वहाँ पर चलाते हैं।
1: तो मैंने बोरिंग ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिंचाई के लिए फायदे का साबित हो रहा है,
0: सिंचाई के लिए। और मनरेगा से भी जैसे हम लोग का कुआं मिलल था, कुआं भी अपना जहाँ जहाँ जरूरत के अनुसार वहाँ पर कुआं भी बनवाए हैं।
1: तो मनरेगा से यहाँ आपने कुआं का भी निर्माण करवाया?
0: हाँ, कुआं के निर्माण हमारा पंचायत में लमसम हमको लगता है कि 15 से 20 कुआं
1: ये हिसरा बरवाड़ी पंचायत में।
0: हाँ, हिसरा बरवाड़ी पंचायत में इतना हुआ है।
1: तो जो आपने पर्सनल अपना भी करवाया?
0: हाँ, अपना पर्सनल भी हम लोग करवाए हैं।
1: तो सिंचाई व्यवस्था मतलब हो जाती होगी अच्छी तरह?
0: हाँ, सिंचाई व्यवस्था हो जाती है। जो कमी था वहाँ, जहाँ पानी की कमी आता था वहाँ पर कुआं के निर्माण करवा दिया है कि पानी जिसे जमा हो जाता है इकट्ठा उससे अपन यूज कर लेते हैं।
1: और दलहन की बात करें तो उसकी क्या स्थिति है दलहन की खेती की?
0: दलहन के लिए अभी तो हम लोग एक दलहन का सीजन खत्म हो गया, जो मूंग लोग बोलते हैं। तो मूंग को लोग तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, लेकिन बारिश लेट से हुआ तो मूंग का जो भी फसल हुआ था बहुत अच्छा रहा। और ऊपर में अभी जितना दलहन का खेती हुआ है वो हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा।
1: अच्छा अच्छा।
0: खेत में जितने लोग बीड़ा बुन दिए वो बारिश के चलते कहीं जर्मिनेशन नहीं हुआ,
1: नहीं हो रहा है।
0: हाँ, सब ऐसा ही जस के तस लोग पड़ा हुआ है।
1: तो अरहर वगैरह की?
0: हाँ, अरहर भी बुना हुआ तो अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है। लोग सूखा खेत में इसी लोग डाल दे रहे हैं, लेकिन जर्मिनेशन कहीं पे नहीं हुआ,
1: इसलिए बारिश बहुत आवश्यक हो गया। पानी बरसना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया।
0: हाँ, पानी हमको लगता है कि अगर एक हफ्ता के अंदर भी बारिश हो जाए
1: तो
0: हाँ दलहन का फायदा हो जाएगा।
1: तो अभी कृषि हमारी इस तरह से गुजर रही है?
0: हाँ, कृषि बहुत मन कठिनाई से गुजर रही है।
1: और तिलहन की क्या स्थिति है?
0: तिलहन का स्थिति है, जो भी बिजरा लोग किसान भाई खेत में डाल चुके हैं उनका कहीं पर कोई अभी जर्मिनेशन नहीं है। वो अगर बारिश होता है तो जर्मिनेशन होगा, बारिश अगर लेट से होगा पूरा दिक्कत हो जाएगा, मतलब कहीं पर फेल हो सकते हैं।
1: मतलब मूलतः हमारे किसान भाई लोग बस टकटकी लगाए हुए हैं।
0: हाँ,
1: बारिश अच्छी तरह से हो, बरसात हो।
0: हाँ,
1: बरसात में तो हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बारिश हो, अभी सूखा की जो स्थिति बनी हुई है, अभी धूप जो चिलचिलाती धूप की स्थिति है, इससे राहत मिले।
0: हाँ,
1: मनरेगा के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे?
0: मनरेगा के बारे में हम सभी किसान भाइयों से कहें कि जुड़िए इससे, और बहुत लाभ है। जो हम लोग मजदूरी दे करके खेत को आरी बेन मड़बन सब जो कराते हैं वो मजदूरी देना नहीं पड़ता है, वो मनरेगा के तहत सारा चीज हमारा मेड़बंदी हो जाता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग मनरेगा में।
1: और इसके लिए अगर जुड़ना हो मान लिए इस कार्यक्रम से, तो हमारे किसान भाई को क्या करना होगा?
0: हमारे किसान इसको जुड़ने के लिए हमारे किसान भाई को यहाँ हमारे पंचायत का रोजगार सेवक होते हैं, रोजगार सेवक
1: किसी भी पंचायत का मतलब?
0: हाँ, किसी भी पंचायत का रोजगार सेवक से मिले। अगर रोजगार सेवक नहीं होते हैं तो पंचायत का सचिव होते हैं या कोई पंचायत सेवक मुखिया जी, या तीनों में से किन्हीं से मिलिए, अपना लोग सारा चीज व्यवस्था
1: मतलब माध्यम वही बनेंगे।
0: हाँ, माध्यम वही लोग बोलेंगे कैसे होगा, क्या करना होगा आपको मनरेगा में।
1: अच्छा।
0: सारा चीज आपको लोगों को बता देंगे,
1: फिर उसके बाद आप मनरेगा से जुड़िए।
0: हाँ, मनरेगा से
1: जो भी प्रोसेस होगा।
0: हाँ,
1: आधार कार्ड वगैरह का या जो कुछ भी होगा।
0: हाँ, सारा चीज अपना उन लोग सारा चीज बताते हैं कैसे ऐसे कीजिए आप लोग। आप लोग
1: इसमें समूह में जुड़ना पड़ता है कि एक एकल व्यक्ति भी जा करके ये काम कर सकते?
0: नहीं, कम से कम दो।
1: कम से कम दो?
0: हाँ, कम से कम दो व्यक्ति, इसमें ज्यादा समूह भी नहीं चाहिए। समूह भी है तो वो अच्छा है, 10 से 12 तक चलता है, 20 तक चलता है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। दो में मालिक से मालिक की मुड़ेबंदी है तो मुड़ेबंदी में कम से कम दो लेबर चाहिए। इससे जिसे जिसे बड़ा बड़ा जुड़े उससे ज्यादा लेबर चाहिए।
1: इस तरह से मतलब जुड़ने की आवश्यकता?
0: हाँ, जुड़ने की आवश्यकता पड़ जाता है। और बता दें कि मनरेगा से एक बागवानी चलता, आम बागवानी।
1: अच्छा।
0: आम बागवानी हमने लगाया था 1 एकड़ में, बहुत अच्छा रहा और अभी भी हमको लगता है कि बहुत अच्छा भी है। फल के माध्यम से हमको लगता है कि अभी आम का पेड़ इंसल कहीं नहीं फरा था।
1: अच्छा।
0: लेकिन उस क्वालिटी ने हर पेड़ फरा और बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा।
1: तो मतलब कि यहाँ आम, आपने आम बागवानी भी कर रखा है?
0: हाँ, अपना मनरेगा से आम बागवानी लगा।
1: कितने आम के पेड़ हैं
0: अभी हमारे पास? सरकार से मिलल था मनरेगा के तहत 120।
1: अच्छा।
0: 120 में 70 से 80 आम
1: मतलब
0: बच्चा
1: हुआ।
0: हाँ, योग्य हुआ।
1: अच्छा।
0: और बाकी मतलब कीड़ा लग गया, या किसी ट्रीटमेंट से
1: मैंने किसी कारणवश खराब हो गया
0: हाँ।
1: लेकिन इतना आपका 70 से 80 पौधा जो था
0: हाँ।
1: वो कामयाब रहा,
0: वो कामयाब है।
1: अच्छा हाँ। किस किस्म का आम है?
0: तो मालदा हो गया।
1: अच्छा,
0: मैंने 3 वैरायटी हम लोग का आम है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, मालदा हो गया, फिर लंबा लंबा एक, और उस आम क्वालिटी देखिए कि लोग सबसे ज्यादा पका हुआ से बेसी कच्चा खाना पसंद करते हैं, एकदम खीरा जैसा लगेगा, खटासर उसमें
1: नहीं रहता है,
0: नहीं रहता है। पकने पर तो लगता है कि क्या आम है, हम लोग भी पका के भी सब देखे हैं।
1: तो मतलब आम की भी बागवानी अच्छी तरह से
0: हाँ,
1: रही है, वो भी मनरेगा के तहत।
0: मनरेगा के तहत
1: जी हाँ, हमारे किसान भाइयों को अब जागरूक होने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से जुड़ने की आवश्यकता है ताकि हमारे कृषि फले फूले और हमारे किसान भाई समृद्ध हो सके, बेहतर लाभ कृषि से प्राप्त कर सके। अब हमारी कृषि व्यवसायीकरण के दौर से गुजर रही है, इसलिए आवश्यकता है हम कृषि में अधिक से अधिक कार्य करें जिससे कृषि का उत्तरोत्तर विकास हो। आप थे पलामू जिला के पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाडी गांव के एक सफल किसान जंग बहादुर मेहता। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े जंग बहादुर मेहता और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां साझा की, मनरेगा से जुड़ी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। आइए अब सुनते हैं लोकगीत।

पूछली जवन कन से पूछी अरे हई नए कन।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, गायक कलाकार थे भरत सिंह भारती। अब आज के मौसम का मिजाज, स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 79% जबकि शाम की आर्द्रता 74% दर्ज की गई। वर्षापात सुने तो मौसम संबंधी इसी सूचना के साथ ही आज का ग्रामीण सभा अब यहीं समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत देश भर के युवाओं को

0: वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। रांची में तैयारी पूरी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए की कम। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल से जुड़े कारोबारियों को राहत। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुलाई में 1,20,000 से अधिक वाहनों का काटा चालान। 7,80,00,000 रुपए का लगाया जुर्माना। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, आदेश जारी। और नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अंश, तेजस्वी और रोनिका ने देश के लिए जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के 10,000 स्थानों पर युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। माय भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने बताया कि रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत थीम के ऊपर 8 तरह का कम्पिटिटिव इवेंट आयोजित किया गया है। जो जिला स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो सारे बच्चे हमारे राज्य स्तरीय कंपटीशन में भाग लेंगे, और राज्य स्तर पे कंपटीशन में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे 14 अगस्त को कार्यक्रम है जिसमें भाग लेंगे।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी है। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रांची की ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई 2026 के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 1,20,000 से अधिक चालान काटे। इन मामलों में लगभग 7,80,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,000 से अधिक मामलों को अभियोजन के लिए न्यायालय भेजा गया। झारखंड सरकार ने जाति सूचक और अपमानजनक नामों को हटाने के लिए नया अधिनियम अधिसूचित किया है, जिसके तहत अब सड़कों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण में भेदभाव वाले शब्दों पर रोक लगेगी। नए नियमों के अनुसार किसी भी जगह का नाम बदलने के लिए 30 दिन के भीतर नगरपालिका या जिला प्रशासन को प्रस्ताव देना होगा और आपत्ति मिलने पर गठित समिति 90 दिन में निर्णय लेगी। 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आज रांची के सदर अस्पताल में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों और अधिकारियों ने माताओं को बताया कि जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाने से नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण का खतरा कम होता है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
4: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
3: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
4: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
3: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
4: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड सरकार 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए प्रति यात्री किराया 2,850 रुपए से लेकर 4,500 रुपए के बीच निर्धारित किया गया है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रांची पुलिस ने शहर के प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर व्यापक सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी तथा सीसीटीवी, बाइक पेट्रोलिंग और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। पहाड़ी मंदिर के आसपास भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। गिरडी के नक्षत्र वन में आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने पौधे लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पचम्बा से सटे कल्याणडीह में बनने वाला 28 एकड़ का रॉक गार्डन, मॉर्निंग वॉक और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
5: शहर से बिल्कुल सटे हुए 28 एकड़ का यह भूभाग वास्तव में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित। यहाँ पर बनने वाले इस रॉक गार्डन से पचम्बा वासियों को खास करके लाभ होगा। सुबह शाम जब वो टहलने के लिए सोचेंगे, उनके पास नगर वन जैसा एक विकल्प होगा जहाँ पर शुद्ध वायु में सांस लेते हुए वो सुबह शाम टहलने का काम कर सकेंगे।
0: रांची नगर निगम में आज महापौर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावित सखुआ महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। महापौर ने बताया कि महोत्सव के तहत सखुआ के साथ महुआ, पलाश, कुसुम और डाहू सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे।
6: सखुआ महोत्सव हम लोग करने के लिए उत्साहित भी है। एक जगह का चयन हो जाए जहाँ पर हम लोग पर्याप्त रूप में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सके, उसमें सखुआ को हम लोग लीडिंग पोजीशन पर रख रहे हैं। लेकिन हर तरह के पेड़ जो हमारे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, सारे तरह के पेड़ हम लोग लगाने के बारे में सोच रहे हैं। एकीसो महादेव जब खोजा गया है, कहीं ना कहीं वो झाड़ियों की वजह से छिप गए थे। ऐसे पर्यटक स्थल को एक एक कोने कोने में पहुँचा सके, उसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
0: जमशेदपुर के दो मुहानी नदी संगम तट पर एक पौधा भविष्य के नाम अभियान के तहत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने पौधारोपण किया। पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने कहा कि आज लगाया गया हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की अमूल्य पूंजी है।
7: पहले विरोध होता था पेड़ पौधा लगाने से, हमारा जमीन सरकार ले लेगी, बंजर भूमि में पौधा लगाने से बैल कहाँ चराएंगे। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि आज हमारे स्कूल बच्चे, हमारे नेता मंत्री सभी पौधा लगाने में अपना भूमिका निभा रही है। लगता है कि अभी इस हमारे क्षेत्र में वातावरण को बदलने का असर आ गया है।
0: नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के अंश कुमार सिंह, तेजस्वी कुमार और रोनिका राशि ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 11 देशों के भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में तीनों खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। विजेता खिलाड़ी 4 अगस्त को रांची लौटेंगे, जहां उनके सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत देश भर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। रांची में तैयारी पूरी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए की कम। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल से जुड़े कारोबारियों को राहत। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुलाई में 1,20,000 से अधिक वाहनों का काटा चालान। 7,80,00,000 रुपए का लगाया जुर्माना। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। आदेश जारी। और नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अंश, तेजस्वी और अनिका ने देश के लिए जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: रांची के धुरा स्थित पुराना विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सुरक्षा, वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियां विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार को इस संबंध में ठोस नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए।
2: साइबर फ्रॉड के बारे में सरकार के तरफ से, चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य का सरकार हो, एक ठोस नीति बनना चाहिए ताकि अगर साइबर फ्रॉड में कोई व्यक्ति अगर पकड़ाए तो कठोर से कठोर साजा होना चाहिए।
1: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब जनसंख्या की नहीं बल्कि जनशक्ति की जरूरत है।
3: अब आबादी में हम लोग कंट्रोल है, लेकिन चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुंचाए, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और खासकर के 42,000 जो सैया बहने हैं, मैंने उनसे कहा आपका बहुत बड़ी जवाबदेही है कि जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हस्पताल कैसे पहुंचाए, ममता वाहन को ठीक कैसे करें।
1: रांची के ऑडरे हाउस में 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि छोटे छोटे और निरंतर प्रयास करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जारी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए समाज के सभी स्टेक होल्डर को एक मंच पर आना आज सबसे बड़ी जरूरत है। रांची विश्वविद्यालय ने अपना 67वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। वर्ष 1960 में स्थापित रांची विश्वविद्यालय ने अपनी गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा के 67 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सरोज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, फाइन आर्ट्स और शोध को भी समान महत्व जा रहा है।
4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कहती है कि करिकुलम सिर्फ पढ़ना नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, उसके साथ साथ कला, संस्कृति, गीत, संगीत, फाइन आर्ट्स, ये सब है।
1: समारोह में उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रांची विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं गीत गजल का कार्यक्रम स्वरांजलि। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में गजल।

गीत गजल का कार्यक्रम स्वरांजलि। फनकार थे तलत अजीज। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत पौधों में परिसंचरण क्रिया इस विषय पर एक कार्यक्रम। संकलन और वाचन प्रीति कुमारी का है।

कार्यक्रम विज्ञान जगत अपनी रेडियो दोस्त प्रीति के साथ। श्रोताओ, आज हम आपको बता रहे हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस लिए, तो आज हम बात कर रहे हैं पौधों में परिसंचरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। आखिर जो हम पानी पौधों में डालते हैं वो पत्तियों तक कैसे पहुंचती हैं, आखिर कोई ना कोई विधि तो ज़रूर होगी जिसकी वजह से प्रकाश और संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आज बात इसी के विषय में। जीव शरीर में विभिन्न पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। जड़ द्वारा भूमि से अवशोषित जल यदि पत्तियों तक नहीं पहुँचे तो प्रकाश और संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसीलिए पौधों में जड़ के द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं परिसंचरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो क्रिया होती है ये बहुत इसकी बहुत सारी विधियां होती है, इसी के विषय में आज मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। इसके अगर विधि की बात करें तो पहली विधि होती है विषरण यानी कि डिफ्यूज़न। किसी गैस, तरल या ठोस के अणु या आयन अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर अगर गति करते हैं तो इस क्रिया को विषरण कहते हैं। यह क्रिया उस समय तक होती रहती है जब तक कि किसी पदार्थ के अणु अमुक स्थान में समान रूप से न फैल जाएं। अब बारी आती है ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की। परासरण एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें विसरण के अणु का विसरण बिना रोक टोक होता है और विसरित होने वाले अणु एक दूसरे से सीधे संपर्क में रहते हैं। इसके विपरीत शर्करा या नमक के घोल व अंडे को जो अंडे की जो जर्दी होती है या सुअर या बकरे के आश्रय या पार्चमेंट पेपर आदि किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करने पर पानी शर्करा के घोल यानी कि कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर विसरित होने लगता है। विसरण की इस क्रिया को परासरण कहते हैं। और ये भी दो तरह से होता है, एक होता है अंतःपरासरण और दूसरा होता है बहिःपरासरण। यदि कोशिकाओं को अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखें तो जल कोशिकाओं से बाहर आने लगते हैं, इसे कहते हैं बहिःपरासरण। और कोशिकाओं को कम सांद्रता वाले विलयन में रखें तो जल कोशिकाओं में प्रवेश करने लगते हैं, इसे कहते हैं अंतःपरासरण। अब हम बात करते हैं स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर की। अंतःपरासरण के कारण कोशिका में जल के द्वारा कोशिका भित्तियों पर डाले जाने वाले दाब स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर कहलाता है, जिसके कारण कोशिकाएं स्फीति या तनी हुई अवस्था में रहती हैं। स्फीति दाब के साथ साथ ही इसके सम व विपरीत एक दाब कोशिका भित्ति के द्वारा भी उत्पन्न होती है, जिसे भित्ति दाब यानी कि वॉल प्रेशर भी कहा जाता है। एक विधि होती है सक्शन विधि यानी कि चूषण विधि। इस विषरण दाब न्यूनता भी कहा जाता है, इसे

किसी भी विलयन में विषण दाब के द्वारा उसके शुद्ध विलायक के विषण दाब का अंतर उस विलयन के विषण दाब न्यूनता या चूषण के दाब का माप होता है। इसे जल की विभक्तता कहा जाता है। अब बारी आती है अंतर शोषण की, यानी कि इम्बिबिशन। विषरण एवं परासरण की भांति अंतर शोषण भी एक भौतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा शुष्क पदार्थ जल का शोषण करके फूल जाते हैं, जैसे कपास के रेशे, बीज, लकड़ी का बुरादा आदि ऐसे ही पदार्थ है जो अंतर शोषण के द्वारा जल सोखते हैं। पादप कोशिकाओं में प्राथमिक एवं द्वितीयक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टिन पदार्थों की बनी होती है। वास्तव में जलप्रिय कोलाइड है यह, और इसी कारण पानी की काफ़ी मात्रा का अंतर शोषण करते हैं ये। अब हम बात करते हैं अवशोषण की, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बारे में। पौधों की जड़ों के द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं और पौधे की मुख्य जड़ व इनकी शाखाएं भूमि के अंदर तक जाल सा फैलाए रखती है। भूमि में मूल तंत्र की लंबाई प्रायः कई मीटर तक होती है। पौधे इस विस्तृत मूल तंत्र की सहायता से भूमि से अपने लिए आवश्यक जल व खनिज लवणों की पूर्ति करते हैं। पानी व खनिज लवणों की आवश्यक जो जड़ों का जो अवशोषण होता है उसे अग्रस्त भागों के द्वारा होता है, और जड़ों के सिरों पर मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का बना हुआ लगभग 1 mm लंबा वृद्धि बिंदु होता है। इसके ठीक ऊपर की ओर दीर्घीकरण प्रदेश होता है। इन दोनों प्रदेशों में जल का अवशोषण नहीं के बराबर होता है। दीर्घीकरण प्रदेश के ठीक ऊपर 1 से 4 mm लंबा मूल रोम प्रदेश होता है। जल की अधिकांश मात्रा का अवशोषण इसी प्रदेश में होता है। इससे ऊपर की भित्तियों में सुबेरीन और क्यूटीन के जमा होने के कारण जल का अवशोषण नहीं हो सकता है। मूल रोम मृदा कणों के बीच कोशिका जल के निकट संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक मूल रोम के मध्य में एक बड़ी धानी होती है जिससे कोशिका रस में खनिज लवण, सरकड़ा व कार्बनिक अम्ल घुलित अवस्था में रहते हैं। भूमि के जल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, अर्थात कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के परासरण दाब से अधिक होता है। यह दोनों अर्धपारगम्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है और पैक्टिन पदार्थ की उपस्थिति के कारण यह बड़ी मात्रा में जल को सोख लेती है। कोशिका भित्ति के द्वारा जल का अंतर शोषण और जल के अवशोषण का प्रथम पद होता है। यहाँ से जल कोशिका रस से उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर मूल रोम में प्रवेश करते हैं। इसके बाद उच्च वर्गीय पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। जाइलम उत्तक नलिकाओं की सहायता से जड़ के द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण इत्यादि पौधों की तने एवं पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम भी जाइलम की तरह एक प्रकार का जटिल उत्तक है। यह मुख्य रूप से पत्तियों से बना भोजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम आपको बताते हैं चालन यानी कंडक्शन के बारे में। मूल रोमों के द्वारा अवशोषण के बाद जल धीरे धीरे कॉर्टेक्स कोशिकाओं में पहुंचता है और अंत में एंडोडर्मिस व परिरंभ से पारित होकर जाइलम वेसल्स में पहुंचता है। मूल रोमों के द्वारा अवशोषण के बाद अवशोषित जल के जाइलम वेसल्स की ओर चालन की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। जल मूल रोम की अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से पारित होकर मूल रोम में प्रविष्ट होता है जिससे कि चूषण दाब कम हो जाता है। परासरण दाब की
कम होने के साथ साथ मूल रोम की स्फीति दाब बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप मूल रोम का चूषण दाब शून्य हो जाता है। इस दशा में मूल रोम के पास कॉर्टेक्स कोशिकाओं के कोशिका

0: सूक्ष्म दाब अंदर की कोशिकाओं के सूक्ष्म दाब से कम हो जाता है। इसके साथ ही स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर बढ़ता जाता है और अंतिम क्षण में यह पराशर दाब के बराबर हो जाता है और इस प्रकार जल का प्रसार अंदर की कोशिकाओं में होने लगता है और यह क्रम निरंतर होता रहता है। जल कॉर्टेक्स की एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक और एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में एकत्रित होने लगता है। प्रोटोप्लाज्म वेसल्स के ठीक सामने की एंडोडर्मिस कोशिकाएं जो होती हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं जिन्हें मार्ग कोशिका कहते हैं। जल का प्रवाह इन कोशिकाओं से होकर परिरंभ कोशिकाओं में पहुंचता है। इसके बाद जल का प्रवाह प्रोटोजाइलम में होता है और इस प्रकार मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जाइलम वेसल्स में पहुंचता है जिससे कि जाइलम वेसल्स की ओर एक प्रकार का चूषण दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है जिसके द्वारा जल भूमि की मृदा कणों में जाइलम में प्रवाहित होने लगता है। जड़ों में जल के चालन के समय कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस व परिरंभ की कोशिकाएं सामूहिक रूप से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करती हैं। अब हम बात करते हैं जल स्थानांतरण की। तो जल तो पहुंच गया जड़ों से लेकर के पत्तियों तक, लेकिन इसका स्थानांतरण आखिर होता कैसे है? मूल रोमों के द्वारा अवशोषित जल का जड़ों से पौधों के अन्य उपस्थित भागों में स्थानांतरण को जल स्थानांतरण कहते हैं। यह क्रियाविधि भी काफ़ी जटिल होती है। इसमें भी कई सिद्धांत हैं, जैविक सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत और भौतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत कोशिकत्व सिद्धांत और वाष्पोत्सर्जन तनाव व संसर्जन बल का सिद्धांत मुख्य होता है। मूल दाब तथा कोशिकत्व के द्वारा जड़ों से जल का कुछ दूरी तक ही स्थानांतरण संभव हो पाता। जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के बहुत पतली कोशिकाओं के समान संरचनाएं होती है जिसमें जल मूल दाब के प्रभाव से कुछ ही दूरी तक चढ़ पाता। जल के ऊपर की दिशा में चालन हेतु दो प्रकार के बलों असंजम बल और विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण का बल होता है और होता है एक संसर्जन बल और समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण का बल होता है। बलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संसर्जन बल के द्वारा जल के अणु परस्पर आकर्षित हो एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिससे कि जाइलम वाहिकाओं व जल की अणुओं के मध्य उपस्थित असंजन बल के द्वारा खींच कर रखा जाता है। साथ ही जल के वाष्पीकरण के द्वारा इस अटूट जल श्रृंखला हेतु तनाव उत्पन्न होता है जिससे कि ये जल श्रृंखला जाइलम व जल अणुओं के मध्य उपस्थित असंजन बल के द्वारा ऊपर की ओर खींचती है। इस प्रकार जल का पौधों के ऊपरी भागों में चालन होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न यह तनाव लगभग 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर वर्ग मीटर का होता है जिससे कि यह श्रृंखला 105 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकती है। अब बारी आती है भोजन का परिचालन की। उच्च श्रेणी के पौधों का पर्ण में बनने वाला कार्बो
1: की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और

शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा अधूरी रही।
उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक

अखबार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक

और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे इस सप्ताह संसद में, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की

0: अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई। 9

0: लाख चालीस हजार हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है।

0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
1: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में

0: निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरला में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरा अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news.

0: Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekananda युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से.
0: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS, and increasing medical seats as well.
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है. पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं. 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई. 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं. आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है.
0: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है. मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.
0: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की. 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे. आज ये संख्या 166 है. एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी. एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है.
0: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central share of the State Disaster Response Fund SDRF to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. We have a report.
2: The assistance approved for the affected states includes 44.55 crore rupees to Arunachal Pradesh as advance release of the first

वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीरे आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासरा रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब का जोर जारी है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 6 अफराद की मौत हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सोमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त में नुमाया रोल के लिए भारतीय नौजवानों की सताइश की है और उन पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई की मुहिम, पानी की बचत और कुदरती वसाइल को महफूज रखने के शोबों में भी

0: अपना रोल अदा करें और भारत में बनाई गई मसनूआत तोहफे में दें। जना मोदी आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि हमारे नौजवानों को राह दिखाना और मुल्क की तामीर के लिए काम करने की खातिर उन्हें बाइख्तियार बनाना स्वामी विवेकानंद का नजरिया था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: जना मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों की सलाहियत की बदौलत भारत दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट बन गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और प्राइवेट सेक्टर के खलाई मिशन में नई नई पेशरफ्त हुई हैं। इसके अलावा जना मोदी ने आईटीआईज, आईआईएम्स, आईआईटीज और एम्स समेत नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करके नीज मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा करके तालीम के शोबे में गुज़श्ता 12 साल के दौरान की गई तरक्की को उजागर किया।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एमबी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने के तई पूरी तरह अहदबंद है। भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे समेत तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों से मरकज और रियासत में एनडीए सरकारों के तहत रियासत की तेज रफ्तार तरक्की की अक्कासी होती है। जना मोदी ने नए हवाई अड्डे को आंध्र प्रदेश, खासतौर पर शिमाली आंध्र की तरक्की के रनवे और रियासत के नौजवानों की उमंगों के लिए एक लॉन्च पैड से ताबीर किया। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने सैलाब से मुतासरा रियासतों की मदद के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम आने वाले रियासती फंड SDRF के लिए मरकज के हिस्से की 2,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सैलाब से मुतासरा 7 रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को इससे कबल माली साल 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त मौसूल हुई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मुतासरा रियासतों के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई है उसमें माली साल 2026-27 के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के वास्ते 44,55,00,000 रुपए शामिल हैं। आसाम के लिए पहली किस्त के तौर पर 79,35,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश को पहले ही इमदाद की पहली किस्त मिल चुकी है और अब दूसरी किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 193,95,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद से हुकूमत रियासती सरकारों के साथ करीबी तालमेल कायम रखते हुए सैलाब की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार ने जहां कहीं भी जरूरत पेश आई हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। इसमें कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स NDRF की टीमों को पहले से तैनात करना और दिफा की वजारत की तरफ से लॉजिस्टिक्स मदद फराहम करना शामिल है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली।

0: सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत आज सुबह से फिर शुरू हो गई है। गुजश्ता 6 साल से ज्यादा अरसे से यह मुअत्तल थी। इस तिजारत का दोबारा शुरू होना भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्तों में एक मुस्बत अलामत है। हमारे नामा निगार ने बताया कि भारत और चीन दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने आज सुबह उस मुकाम पर मुलाकात की जो दोनों में से किसी के भी कब्जे में नहीं है। चीन की नुमाइंदगी कॉमर्स और सरहदी तिजारत के महकमों के नुमाइंदों समेत तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते के इंतजामी सरबराह ने की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सरहद के दोनों तरफ तिजारत की बहाली भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्ते के सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। 1962 में भारत चीन महाज आराई के पेशे नजर बंद रहने के बाद 2006 में सरहदी तिजारत बाजाब्ता तौर पर बहाल की गई थी और 2020 में कोविड-19 वबा के सबब मुअत्तल किए जाने से पहले बिला रुकावट जारी रही। ये सरहदी तिजारत पीर से जुमेरात तक अंजाम दी जा सकेगी और भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे गेट खोले जाएंगे और हर इंदराज शुदा ताजिर को रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख रुपए की तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंजूर शुदा दर आमदाती और बर आमदाती अशिया की मौजूदा फहरिस्त और कामकाज के मेयारी जाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रसाद नड्डा ने पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान की तैयारियों का आज जायजा लिया ताकि बिला रुकावट महफूज शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इम्तिहान को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को होगा। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने तिब्बी साइंस से मुतालिक इम्तिहानात के कौमी बोर्ड टेक्नोलॉजी शराकत दारों और उन दीगर मुतालिका फरीकों की तैयारियों का जायजा लिया जो इम्तिहान के इनेकाद से मुंसलिक हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा में महानदी और उसकी मुआविन नदियों में तोगयानी के साथ सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है जिससे कटक पुरी जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा और खोरदा अजला के नशेबी इलाकों को एक बार फिर खतरा लाहिक हो गया है। 10 नशेबी अजला मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि हीराकुंड बांध से 22 गेट के जरिए सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हैं जबकि 2,69,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुटायम उडुकी और मलापुरम जिलों से आज बारिश से वाबस्ता 6 अमवात की इत्तला मिली है जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 के बंद होने के पेश नजर रेलवे ने फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से निमटने के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि शाहराह बंद होने के बाद श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नजर कमर्शियल कंट्रोल जम्मू तवी की दरखास्त के बाद यह फैसला किया गया है। मरकजी सरकार ने टैक्स मुंतकली की एक इजाफी किस्त के तौर पर रियासती सरकारों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं जो 10 अगस्त के लिए तयशुदा महाना मुंतकली के अलावा हैं। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजाफी किस्त का मकसद रियासतों को सरमाया अखराजात और तरक्याती अखराजात के अमल में तेजी लाने के लिए मजीद सहूलत फराहम करना है। वजारत की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों के लिए जारी किए गए अलहदा अलहदा रादोशुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। उधर मगरबी बंगाल को 7,866 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं जबकि महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए मिले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आगाज करेंगे। मनुष्यात के खिलाफ 100 हफ्तों की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम शुरू होने के मौके पर इसका आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा मकामात से मुल्क भर के नौजवान हिस्सा लेंगे। मस्कूरा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तेवार सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा ताकि बेदारी को फरोग देने और एक ऐसा मुआशरा बनाने में अवाम की शमूलियत की हौसला अफजाई की जा सके जहां मनशियात की लानत ना हो। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने आज फजाइया के नायब सरबराह की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कौमी जंगी यादगार पर गुलदायरा नजर किया और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सूरमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। 16 जून 1990 को एक फाइटर पायलट के तौर पर फजाइया में शामिल हुए एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 3,500 से ज्यादा घंटों की परवाज का तजुर्बा है। वो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय फजाइया में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, आजाद रुकन पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद और दीगर मुतालिका लोगों के खिलाफ कल पार्लियामेंट के अहाते में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की है। नई दिल्ली की रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज की क्यादत में बीजेपी के वफद ने अपोजिशन लीडरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का मुतालबा किया। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की तादाद 30 होने के बाद भारत आज छठे मकाम पर पहुंच गया। भारत ने सोने के 8, चांदी के 15 और कांसे के 7 तमगे जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में सोने के तमगे जीते। प्रीति ने खवातीन के 54 किलोग्राम के जुमरे में कैनेडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराकर खिताब जीता। मौजूदा आलमी चैंपियन जैस्मीन ने खवातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में शिमाली आयरलैंड की मिशेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त दी। पैरा एथलेटिक्स में मर्दों के शॉटपुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का और शुभम जोयाल ने चांदी का तमगा जीता। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सुमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम बोल रहे हैं विविध भारती से, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

इस धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के, खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव, एक मिल मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था।

0: नाम जी।
1: और लॉटरी लगी, सवा लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आमतौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत भी सुन लेते हैं।

अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर ये फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।

30 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते, वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002 दादर की एक चौल में बने दो कमरों के मकान में ये अलबेला कलाकार भगवान को प्यारा हो गया।

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से

चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की सभा। प्रातःकालीन प्रसारण में सुबह 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।